फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे।

और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आए और न किसी की सिफारिश मंजूर की जाए और न किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाए और न लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सकें। और हमारे उन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फिर तुमको तो नजात दी और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया, और तुम देख रहे थे।

قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.

क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है, और बाज उनमें अनपढ़ हैं कि अपनी आरजुओं के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ ही नहीं, और वो सिर्फ अटकल से काम लेते हैं। सो उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के पास से आई है, ताकि उसके इवज थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफात हासिल करें। सो उन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर उन पर अफसोस है इसलिए कि ऐसे काम करते हैं।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

पंजाब सिंध जे एतजाज ऐं एतराज़ खे रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर केनाल में पाणी छोर करे छॾियो। रसूल हाइड्रोक्स तां झेलम दरिया जो पाणी आज़माइशी बुनियाद ते न्यू जलाल केनाल में छोड़ कयो। रसूल हाइड्रोक्स तां लॻभॻि 1,350 क्यूसिक पाणीअ जो छोर। इरसा तर्जुमान चवण आहे त पंजाब पंहिंजे हिसे जो पाणी न्यू जलाल केनाल में छॾियो। असांखे को एतिराज़ न आहे। इरसा 2014 में न्यू जलाल केनाल लाइ NOC जारी करे चुकी हुई। 2014 में जलाल केनाल जे सिंध मुखालफ़त कई हुई, ॿियनि सूबनि हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी केनालनि ख़िलाफ़ CCI में बि आवाज़ उथारियो। सिंध हुकूमत जो मौक़ुफ़ आहे त गॾियल मफ़ादनि वारे काउंसिल अञा ताईं न्यू जलाल केनाल जी मंज़ूरी न ॾिनी आहे। CCI जी मंज़ूरीअ खां सवाइ केनाल खोलणु मुनासिब न आहे। सिंध ऐं बलोचिस्तान विच में पाणी विर्छ वारा मामला गॾियल राब्ते सहकार ऐं मुआहिदनि मुताबिक़ हल करण ते इतफ़ाक़। सिंध जे आबपाशीअ वारे वज़ीर जाम खान छोरो ऐं बलोचिस्तान जे आबपाशीअ वारे वज़ीर सादिक उमराणी जो ऑनलाइन इजलास। जाम खान छोरो चयो आहे त आबी मुआहिदे तहत बलोचिस्तान खे हिसे जो पाणी मुकमल ऐं वक़्त सां ॾिनो वञे। ॿिन्ही सूबनि जे आबादगारनि जे मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ यकीनी बणाइणु ज़रूरी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोलियम क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो करे छॾियो। पेट्रोल 5.44 रुपया ऐं डीज़ल 31.05 रुपया फी लीटर महांगो। क़ीमतुनि में इज़ाफ़े बाद पेट्रोल 316.15 रुपया ऐं डीज़ल 354.35 रुपया फी लीटर थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न अघनि में वाधो नोटिफिकेशन बि जारी करे छॾियो।

0: जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैन अल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नजर आती है उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है, वो भी ओगरा को कहा गया है कि आवाम के सामने पब्लिश करा करे ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना नागुजीर है कि हम इस मामले को आगे शफाफियत के साथ लेके चले और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे जरूर होगा पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था कि आज 70-80 साल के बाद भी पाकिस्तान 90% अपनी तवानाई की जरूरत इंपोर्ट्स के जरिए मीट करता है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज भी FIA IB सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये हिदायत जारी कर दी है कि नाजायज मुनाफा खोरी अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जा अघ रोज़ाने जे बुनियाद ते मुक़रर करण जो ऐलान करे छॾियो। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो आहे त ओगरा रोज़ाने जे बुनियाद ते हुकूमत खां पुछण खां सवाइ आलमी क़ीमतुनि मुताबिक़ तेल अघनि जो फ़ैसिलो कंदी। आलमी सतह ते डीज़ल $110 मां वधी $140 ताईं पहुची वियो आहे। 130 अरब जा वसीला इस्तेमाल कंदी माण्हुनि खे सहारो ॾियण जी कोशिश कई। पेट्रोल आलमी सतह ते सस्तो थियण ते अवाम खे 70-80 रुपयनि जो रिलीफ ॾिनो वियो। अवाम ते कंहिं बि क़िस्म जो वाधू बार न आहे विधो। अता तारण चयो त खिते में शिकत आणण सबबि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि थी रही आहे। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां कार्गो घुराए तवानाई ज़रूरतुनि खे पूरो कयो वियो। रोज़ाने जे बुनियाद ते तेल अघनि जूं क़ीमतूं मुक़रर करण वारे हुकूमती फ़ैसिले खे रद्द करे छॾियो। मुल्क गिर हड़ताल जी धमकी आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर एसोसिएशन जे अॻवाननि चयो त रद्द अमल ज़ाहिर कंदे चयो आहे त हुकूमत बेवकूफ़ीअ वारो फ़ैसिलो वापसि न वरितो वियो त पूरे मुल्क में हड़ताल कई वेंदी। अमेरिका जा ईरान ते 7 ॾींहं बि मिज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद 20 ज़ख़्मी। ईरान पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि रेलवे ट्रेक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो। बूशर लोहिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि पुलनि न्यूल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे पुल ज़रिए ॻंढींदड़नि खे बि अमरीका तबाह करे छॾियो। अमरीकी सेनकाम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं न्यूल निज़ाम खे बि निशानो बणायो वियो।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: पंजाब सिंध के एहतजाज एतराज के रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर कैनाल में पानी छोड़ करे छो रसूल हेडवर्क्स का जहलम दरिया जो पानी आजमाशी बुनियादन ते न्यू जलाल कैनाल में छोड़ कयो वयो रसूल हेडवर्क्स का लगभग 1,350 क्यूसिक पानी जो छोड़ इरसा तर्जमान जो चवण है त पंजाब पंजे हिस्से जो पानी न्यू जलालपुर कैनाल में छो असा के को एतराज ना इरसा 2014 में न्यू जलाल जलालपुर कैनाल लाए एनओसी जारी करे चुकी हुई 2014 में जलालपुर कैनाल जे सिंध मुखालफत कई हुई बेन सूबन हिमायत कई हुई सिंध तकरारी कैनाल खिलाफ सीसीआई में भी आवाज उथारे हो सिंध हुकूमत जो मौकिफ है त गडियल मुफादन वाले काउंसिल अजा ताई न्यू जलाल कैनाल जे मंजूरी न डनी है सीसीआई जी मंजूरी का सिवाय कैनाल खोलण मुनासिब ना सिंध ए बलोचिस्तान विच में पानी विरछ वारा मामला गडियल राबते सहकार ए मुहिदन मुताबिक हल करण ते इतफाक सिंध जे आपाशी वारे वजीर जाम खान शोरो ए बलोचिस्तान जे आपाशी वारे वजीर सादिक उमराणी जो ऑनलाइन इजलास जाम खान शोरो चयो आहे त आबी मुहिदे तहत बलोचिस्तान के हिस्से जो पानी मुकमिल ए वक्त सर डि॒नो वञे बिन्ही सूबनि जे आबादगारनि जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ यकीनी बणाइण ज़रूरी आहे वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम कीमतनि में इज़ाफ़ो करे छॾियो पेट्रोल 5 रुपया 44 पैसा ऐं डीज़ल 31 रुपया 5 पैसा फी लीटर महांगो कीमतनि में इज़ाफ़े बाद पेट्रोल 316 रुपया 15 पैसा ऐं डीज़ल 354 रुपया 35 पैसा फी लीटर थी वियो पेट्रोलियम डीज़ल अघनि में वाध जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो

0: कफील देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जमान बहरीन को एहतशाम कतर ए इराक में जवाबी हमला अमेरिकी फौजी अडन ए दिफाई निज़ाम के निशानो बनाने की दावा पासदार इनकलाब मूजिब उर्दन में हमले के नतीजे में अमेरिकी वेड़ाक जहाज तबाह थमान में अमेरिका के जदीद रेडार सिस्टम के तबाह किया वो शाम में भी अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह किया जैसे नतीजे में केतरा ही अमेरिकी फौजी भी मार कोएत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण की तस्दीक कर छी। आपने हरमुज के पेरी विचवे के टिन हफ्तन के घट सतह ताई पहुंची वही मेरी टाइम्स तंजीम मूजिब खमीस दिहाड़े सिर्फ अठ जहाज आपने हरमुज का गुजरिया अठ मां सत जहाज ईरानी रस्तों इख्तियार कयो। गडियल कौमन के ईरान ए विचो भर में शहरी हंधन से हमलन की मजम्मत इंतोग एतरो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के निशानो बनाने से गणती जो इजहार कयो संदस चवण हो तड़ा हमला कबूल करण जोगा नाहिन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम दर्द सोजन वरम फौरी खत्म आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

जो नीह मुसा आजारा मुझे शरते खून सवारा न की मानी मुखे नसीबा न की पानी मुखे नसीबा पंजो पान सा कहर कयो मु पप्पीए सा परणो कयो

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है,
1: सुनते रहो GFM 90.8।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज,
5: ढाडो सुठो
4: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
4: सुनते रहो GFM 90.8.
3: बहजो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
4: GFM 90.8.
5: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ.

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਟੌਪ ਤੇ।
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अरब डॉलर जे ज़ब्त थियल असासन जे जारी करण वारे मुआहिदे खे हतमी शकल ॾिनी वई आहे। आबना हरमुज़ में जहाज़नि जे अचवञ जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ़ जे स्पीकर जो बयान, बाकर कालेबाफ़ चयो त आबना हरमुज़ जो इंतज़ाम ईरानी क़यादत ई तय कंदी। ईरान यूरेनियम ॿाहिरों माण बदिरां रचाव जे सतह घटाए न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म एसाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू, एसाक डार चयो त अमेरिका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो। आबना हरमुज़ मां जहाज 60 ॾींहं ताईं ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रंप ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई। सऊदी अरब, कतर, मिस्र ऐं गॾियल इमारतूं टेकाड़ीअ खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो सख़्त थी सघे थो। डील में को बि नाकारी नुक़्तो नाहे।

0: आपने हर मुझे बहरी टिन हफ्तन जी घट सतत पहुंची वही मेरी टाइम तंजीम मौजूब खमीस दिहाड़े सिर्फ अठ जहाज आपने हर मुझ का गुजरिया अठ मां सत जहाज ईरानी रस्तो इख्तियार कयो। गलियल कौमन जे ईरान ऐं विचोभर में शहरी हंधन ते हमलन जी मज़म्मत एंथोनी गोतरेस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के निशानो बणाइण ते गणतीअ जो इज़हार कयो। संदसि चवण हो त अहिड़ा हमला क़बूलण जोगा न आहिनि। पेट्रोल जे अघ जो ऐलान हाणे रोज़ थींदो। ओगरा कराची लाहौर इस्लामाबाद समेत सॼे मुल्क में पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघ रोज़ानो मुक़ररु कंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर अताला तारण ऐं अली परवेज़ मलिक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफ़ाक़ी वज़ीरनि चयो त आलमी मंडी तेल जो अघु घटि थिए या वध क़ीमत फौरी तौर तय थींदी। पेट्रोल मालिकनि पारां हुकूमती फ़ैसिलो रद्द फ़ैसिलो वापसि न वठण ते एहतजाज जो चिताउ। तेल जा अघु रोज़ मुक़ररु जो फ़ैसिलो त थी वियो। छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा अघु रोज़ मुक़ररु थींदा? छा रेलवे जो किरायो रोज़ तब्दील थींदो? पेट्रोल अघनि जे रोज़ाने वारी फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया। अवाम परेशान। पेट्रोल सां गॾु छा सब्ज़ी गोश्त ऐं फ्रूट्स रोज़ महांगा ऐं सस्ता थींदा? पेट्रोल मालिक तेल महांगो थियण जी लालच में विकिरो रोके बि छॾनि था? छा रोज़ ईअं ई थींदो? सिक्योरिटी फोर्सिस जी वाना में कार्रवाई दहशतगर्दी जी वॾी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े वाना में बारूदी मवाद सां भरियल गाॾी तबाह करे छॾी। कार्रवाई में ख़ारिजी जहनुम भेड़ो ऐं 5 दहशतगर्द ज़ख़्मी थिया। गाॾी में मौजूदु धमाकेदार मवाद दहशतगर्द हमले में इस्तेमालु थियणो हो। सीनियर वज़ीर शर्जीना मेमण जी सदारत हेठि बस डिपोज़ लाइ ज़मीन जी फ़राहमी बाबति इजलास। शर्जीलीना मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत पारां 50 डबल डेकर बसूं ऐं 500 इलेक्ट्रिक बसूं ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिलु कयूं पयूं वञनि। डिपोज़ लाइ घुर्बल एराज़ी जी निशानी ऐं फ़राहमी वारे अमल खे फौरी मुकमिल कयो वञे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ़राहमीअ लाइ पुरअज़म आहे। पने आखिल में सगावती तकरार तां जेड़ो नींगरी कतल वारसन जो एहतजाज जेड़े में धक लॻण सबब सीमा चाचर दम धणी हवाले करे छॾियो। मुतासिरनि जो चवण आहे त बासरनि घर ते हमिलो करे तशदुद कयो। धक लॻण सबब नींगरी कतल थी वई आहे। नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे। पीर ॻोठ भरिसां ॿिनि धुरियुनि में ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल टे ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ फाज़िल फ़क़ीर राहूजो में कलोड़ा ऐं राहूजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़े दौरान गोलियूं लॻण सबब पीर पागारे जो मुलाज़िम मुहरम कलोड़ो मारिजी वियो। टे ॼणा ज़ख़्मी। ज़ख़्मियुनि में नूर मोहम्मद माशू कलोड़ो ऐं मीर हसन राहूजो शामिल। इस्पताल मुंतकिल। लाड़काणे में जिया गैंग जे इनाम रखियल ॿिनि ॾोहारियुनि समेत 14 ॼणनि खे गिरफ़्तारी ॾेई छॾी। 20 लख इनाम रखियल गुलाब जियो ऐं 5 लख इनाम रखियल गहराम जियो समेत 14 ॼणा पुलिस वटि पेश। घरू वज़ीर ज़िया लंजार चयो आहे त मजमूई तौरु 28 ॼणनि हथियार फिटा कया आहिनि। 15 सालनि खां हलंदड़ क़बाइली तकरार ख़तम थी वियो आहे। तकरार दौरान 28 जानियूं विञाइजी वियूं आहिनि। लॻभॻि 2000 एकड़ ज़रई ज़मीन वीरान थी वई ऐं 3 ॻोठ उजड़ी विया आहिनि। मलीर नंदी पुल वटि शाहरा भुट्टो ते तामीराती कम सबब नेशनल हाईवे बंदि। 2 ॾींहं खां सुबुह 7 वॻे खां शाम 7 वॻे ताईं बंदि रहंदो। गाॾियुनि जूं ड्रिगियूं कतारूं लॻी वियूं। ट्रैफ़िक खे नदी मां रस्तो ॾिनो वियो। नेशनल हाईवे ते मिंटनि जो सफ़र कलाकनि जो थी वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनजब दिल तमाम खूबसूरत मासूम सुने समातन मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बुरकुल दो के समंदर चाहतों की बारिश लाजवल खजानों के साथ हुआ है पल से पल का से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नीचे जागते समय से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से तार दम से खुशी दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन हिरापुर माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड टी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी प्रोग्राम व्हाइटिश एंड टी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। ये प्रोग्राम आप लोगों का है जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी खूबसूरती का ख्याल तो हर कोई रखना चाहता है, खूबसूरती का ख्याल रखना भी चाहिए। आप भी अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपको बताएंगे बहुत ज्यादा वाली बातें, इसलिए जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिस्टनर प्रेजेंट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत की फहालत कैसे ही आपकी हालत, उम्मीद है शदीद इनके बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे। आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले। तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जी, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है जनाब कि आगे से प्रोग्राम भी कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। जनाब सो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल करती रहिए, खूबसूरतियां हासिल करती रहिए, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जी आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इतनी प्यारी प्यारी लोग हैं तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। आगे भाई अगर आपकी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसको जरा दूर किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती में किस तरह चार चांद लगने वाले हैं। ओके जी, साथ ही साथ बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में आगे और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक या फिर सवाल क्या है। तो अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए, तो आज का जो मेरा आप लोगों से सवाल होगा वो कुछ यूं होने वाला है कि आपने मुझे ये बताना है, फर्ज कर लीजिए अगर आपके फोन की जो मेमोरी है वो फुल हो जाए, यानी कि स्टोरेज पूरा फुल हो जाए और आपके फोन में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने उसमें से कुछ भी डिलीट आप नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो कुछ पुरानी यादें हैं या तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए भी जो ना अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे। ओके जी, तो सवाल कुछ यूं है कि आपने मुझे बताना है कि अगर आपके फोन का स्टोरेज फुल हो जाए, मेमोरी फुल हो जाए और आपके फोन में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ऐसा है कि आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइम आप क्या करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ओके जी प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाइए, कॉल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, बिल्कुल ही जब आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम वाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिससे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए।

जी, सो आप हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में ज्वाइन करते जा रही हूँ और साथ ही साथ ये बात जो है

कि अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोग अपने आसपास जितने भी लोग हमारे साथ हैं यानी कि उनको भी ये बताएंगे भाई जान आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, तो अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज कीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब आप सब लोगों के लिए ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों को ये कहा जाए कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ये से गिने चुने प्रोडक्ट बताए जाए। भाई ऐसी एक बात आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ये तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाने वाले। ओके जी, सो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए तो उसके लिए आप डायल करने वाले हैं 03157990595। बुड़ी 1015 79 9595 ही नंबर है जो तुम डायल करें। पांच करीबी जनरल स्टोर्स व्हाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन यावरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन।

0: उन्हनि खे तव्हां अवेलेबल कराए सघो था हाय मासूमा ये पोएट्री है ये लाज़मी नहीं कि तुझे आंखों से देखूं तेरी याद का आना तेरी दीदार से कम भी नहीं क्या बात है जी और ये हमारे साथ मौजूद है मीरपुर खास से रुखसार मरी है जी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सदरा क्या हाल है आपके आपका शो सुन रहे हैं बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच आपको खुश आमदीद कहती हैं मुझे ओएसटी सुनाइएगा आई विल ट्राई और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ यहां पर कौन अब्दुल गफूर केसर हमारी साथी जी वालेकुम अस्सलाम आपको भी वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है इमरान अली अब्बासी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आप कैसी हैं बाजी आ गए आपके साथ ही हम 3 बजे तक क्या बात है भाई को खुश आमदीद कहा जाता है सालार खान हमारे साथ कहते हैं सलाम क्या हाल है मैं कोटड़ी से आपका शो सुन रहा हूं मैं फर्स्ट टाइम शामिल हुआ हूं कोई वेलकम करेगा बिल्कुल जी आपको वेलकम किया जा रहा है सालार खान आपको खुश आमदीद कहते हैं जी हम इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में वासु भाई हमारे साथ मौजूद है वासु भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं ठीक ठाक और इमरान भाई कहते हैं हमने पहले ही डाउनलोड किया है अच्छा अच्छा ठीक है अच्छी बात है और न कहा अलावा आमिर कहते हैं टॉपिक मासूमा एक फोन की मेमोरी फुल हो जाएगी तो फिर दूसरे फोन जो है ना वो यूज कर लेंगे अच्छा चले सब लोगों के पास तो दूसरे फोन नहीं होते ना तो इसका हल निकालना चाहिए और बताइए अगर आपका फोन जो है उसका स्टोरेज पूरा फुल हो जाए तो आपके फोन में सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो सारा मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो इस सूरत हाल पे आप क्या करेंगे ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा और ये हमारे साथ मौजूद है गोठ मोहम्मद तैयब थेबू को हबीबुल्ला थेबू कहते हैं तवां जो शो वेरी नाइस आहे सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा तवां के वरियाम अली जतोई कहते हैं सिदरा हम भी आ गए हैं आपके इस प्यारी सी महफिल में सिदरा कोई भी अच्छा सा गाना प्ले कीजिएगा फायजा अली का बिल्कुल जी फायजा अली का गाना लगाते हैं आपके लिए और हैप्पी गर्ल हमारी साथ ही अस्सलाम वालेकुम सिरू जानी वेलकम टू शो मैं भी आ गई आपकी प्यारी सी महफिल में आपको खुश आमदीद प्यारी हैप्पी गर्ल कहती है सिरू जानी शो हमेशा की तरह बेस्ट है अल्लाह पाक आपको सलामत रखे मेरी जान आप ही हमेशा खुश रहें और ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें उनके अलावा ये हमारे साथ है ओ ओके जी ओके आपको वेलकम कहा जाता है और साथ ही साथ आप जरा जो है टॉपिक को फॉलो करती रहिए और बताइए कौन कौन से हमारे जो प्यारे लिसनर्स हैं वो वाइट एज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन के ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप वाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो कौन सा प्रोडक्ट लगाया है अगर आप डी स्किन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो भी कौन से आप लगा चुके हैं ये भी आप मुझे बताइएगा सालार खान आपको खुश आमदीद कहा जाता है जी बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहे टॉपिक को फॉलो कीजिए और बताइए आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद है कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आ दें आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहना है प्रोग्राम में साथ देंगे जी पूरी पूरी 3 बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये आपकी खूबसूरती के राज है
1: FM 88 Network, सिंध की आवाज
2: क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ
2: जी हाँ
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है
3: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
2: गर्दन और कमर की तकलीफ
3: पट्ठों के खिंचाव मोच
2: चोट पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
4: लाड़काने वसल्लाए खुशखबरी
5: Age beauty cream.

0: मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ये क्या लॉजिक मुझे समझ नहीं आती. खैर गाना एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. आपकी सदर आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए. टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है अभी तो आए हैं. अच्छा तो हमारे साथ ये मौजूद है, एक मिनट
1: धीरे धीरे.
0: अच्छा ए एन नूर हमारे साथ है, ए एन नूरपुर से है या फिर ए एन, अच्छा मुझे थोड़ा इनका मैसेज ना वो कंफ्यूज कर चुका है. तो ए एन नूरपुर से हमारे साथ है, आपने गाना लिखा है जी, मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना सुनेंगे. बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहा जाता है. और ये हमारे साथ है मेरी छोटी बहन कुलसुम और मेरे बाबा जान मिस्री की फरमाइश है, प्लीज प्ले कीजिएगा गाना, लिखिए आपका गाना लगाते हैं जी. रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंभानी है, वालेकुम अस्सलाम. टॉपिक असा USB वठंदासीं या वरी कंप्यूटर में विझंदासीं. ठीक है भाई, ठीक है. मीरपुर खास अब्दुल्ला महर ने कहती है, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाए तो मैं डिलीट कर दूंगा. कितनी इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट कर देंगे सच्ची बताए. और चाचा खालिद हमारे साथ कहते हैं, बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, जातू जी माफ किया, दिल को तोड़ने वाले OST सुना दीजिएगा. इतना सीडी गाना बोला है, चलिए मैं कोशिश करती हूँ सुनेंगे. और ये हमारे साथ है मिठड़ी सिद्रा मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम अदर सदर बलोच है मोरो से, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और आपकी आवाज भी माशाल्लाह मुझे अच्छी लगती है. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. और उसके अलावा वरियामली कहते हैं, टॉपिक फोन की सारी मेमोरी एक दूसरे मेमोरी कार्ड में कॉपी करेंगे तो फिर सारा फोन खाली हो जाएगा, फिर उसमें जो भी करें तो कर सकते हैं. ओके नॉट बैड. अच्छा नाजिश कहती है, लाड़काना सी हमारे साथ है, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हैं, एहसान तो गया. आए हाय क्या बात है. वालेकुम अस्सलाम, आप ही आप कैसी हैं. टॉपिक में अच्छा फोन आपने लिखा है, उसके बाद आपका मैसेज जो ना वो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट हो चुका है. ये पैनल पर पता नहीं क्यों मसला है कि मैसेजेस थोड़े से जो ना वो मिसिंग पार्ट हो जाते, तो आपको वेलकम करते नाजिश मेरी प्यारी जान, आप हमारे साथ हैं. और बताएं सर आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है. अच्छा हैप्पी कहती है, सिडो जानी मानी खाओ तो सलाद हव, और तुम सुनाओ घर से. नहीं मैं नाश्ता करके आती हूँ.

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना सुनेंगे हम। साथ ही साथ आप सुन रहे हैं White Ace and T Skin Beauty Show, स्पॉन्सर किया जा रहा है White Ace and T Skin Beauty Products की दावन से। टॉपिक को फॉलो करती रही है और साथ ही साथ जरा

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

गाना आप इंजॉय करें, साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके फीडबैक्स की जाने बातें हैं। तो यहाँ पर अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, भेण नोटिफिकेशन पो तो प्रोग्राम बुधण शुरू कयो आहे, कुछ वडन माणन जो फरमाइशों भी हलाइंदा करियो। बिल्कुल जी हुकुम कयो, तवां जी फरमाइश भी हलाइंदासी। आई उन खां अलावा चाचा खाली तुम्हारा टॉपिक ते जवाब दिनो है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आमिर कहते हैं फिर लंच किस टाइम करती हैं? 3 बजे के बाद। वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम ला जवाब, थैंक यू। किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय अदा की आयो, आओ बी आ गया की आयो, खुश आयो असां खां बगैर, बिल्कुल जी। खुश आयो पर तवाजो हजन भी लाजमी है, सो मोटी जो जल्दी। सूफियान अहमद हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम। अनवर भाई कहते हैं हम नाइट क्रीम और डे क्रीम वाइट एश दोनों लगाएंगे, बिल्कुल जी दोनों लगाइए, रात में वाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाइए और दिन में वाइट एश लवली क्रीम लगाइए। आय हाय क्या बात है। ओके जी सूफियान कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू जी, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं।

लेकिन सिंड्रेला इंतजार नहीं करती ये थोड़ा सा कैजुअल है लेकिन हाँ हकीकत है. लेकिन आप ऐसे कीजिएगा, आप डेज स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा. तो डेज स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए. और इसी के साथ साथ डेज स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के तरीकेकार क्या होंगे, अब आप ये सोचेंगे कि भाई जान ये तो सुधरा ने बता दिया कि ये सेंसिटिव स्किन के लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम नहीं लगा सकते. तो बिल्कुल जी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो या फिर नॉर्मल टाइप हो, कॉम्बिनेशन हो, किसी भी तरह की स्किन हो ना, उसके ऊपर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे तो ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया फार्मूला है. तो इसे आप लगाइए, बेशक बहुत ही अच्छे वाले आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे. और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन फेस वॉश लगाएंगे तो वो भी साथ में लगाइएगा. और ये इतने प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जब आप इसे इस्तेमाल करके देखेंगे तो आप कहेंगे आए हाय चस आ गई. अगर इसी के साथ साथ लगाने के क्या तरीके हैं तो आप ऐसा करेंगे जी, रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नाइट क्रीम है, तो अपना फेस वॉश कीजिएगा डी स्किन फेस वॉश से. उसके बाद अच्छे से फेस को सुखा लीजिएगा, देन आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है. तो ये तरीके का अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे. और उसके अलावा आप ट्राई करके देखिएगा और साथ साथ डायल कीजिए 03-15-799-0595 बड़ी 315-79-595. ओके जी, सो मैंने बहुत ही प्यारा गाना लिस्ट में लगा लिया है. सानू तेरे नाल प्यार हो गया और दिल बेकरार हो गया. प्यार होता है तो दिल तो बेकरार होता ही है.

हजार खाना वार्ड से नाजुदे हजार भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको मामा जमान क्या कहते हैं टॉपिक एक फोन का मेमोरी फुल हो गया तो बुआ जी दूसरा मोबाइल ले लेंगे पैसों जाम आप उनके पास वाह सही मैं बुधायो ना मारो उनके फुर करे वेंदव दर्दी दिल आप हमारे साथ मौजूद है वेलकम जी ताजन डेहरी हमारे साथ हेलो

0: रांची महामन खेबर कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, लाजवाब प्यारा शो, थैंक यू जी, थैंक यू। और अनवर भाई कहते हैं
1: Lionware Music Box।
0: अनवर भाई चंड ते हलण जो गालू करे तो चंड ते हाली कोन हलंदासी। हाली थोड़ो सबर कयूं, ठीक है। उनका अलावा हमारे साथ हैं जी आमिर अली। आमिर आपको वेलकम करते हैं जी, थैंक यू। और हजार भाई आपका बहुत शुक्रिया। इनोसेंट रांझा हमारे साथ के दिहाई, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह भी बोलते, नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। और चाचा खालिद कहते हैं गुड शो, बेस्ट होस्टिंग। और कहते हैं आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, वैसे चार तो मिले हुए और कितने मिले।

क्या बात है जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जल्दी से बताइए। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ ही सकरन से कहते हैं सिद्रा मुस्कान प्रोग्राम अच्छा है आवाज के साथ साथ, गुड वेलकम जी, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और उनका अलावा अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया। अच्छा नदीम अहमद बलोच हमारे साथ हैं, नाजुक जी ये आपने लिखा और शुक्रिया। और अली मुर्तजा कहते हैं कि दोस्तों के साथ आपका शो सुन रहा हूँ, अब्दुल कदीर और रफीक अंसारी सबको वेलकम।

शौकत अली हमारा शो सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जनाब, आप बताएं कैसे हैं और पहली मर्तबा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, सो थैंक यू एंड वेलकम कहा जाता है आपको। उसके अलावा अनवर भाई कहते हैं मानो केतरी उम्र में ये तो मुझे नहीं पता ठीक से भाईजान, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे फिर आपको बता देंगे, ठीक है। कहते ना पहले तोला करो फिर बोला करो, समझ रहे हैं। और कीजिए तो आप ऐसा कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जल्दी से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप डायल कीजिए 03 15 799 0595 बुड़ी 315 79 5599। ये नंबर आए जल्दी डायल कर उनका अलावा पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो। आई हाँ टाइम थे आए थे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वेटू था उनका वापसी जल्दी तुम्हारी मोटी चूं था तमा खारी ने मजो ते बैठा हो चुमा ओ ही वनी ओ ही मोटा सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। White Ash and D-Skin Beauty Show is sponsored by White Ash Beauty Products and D-Skin Beauty Products. Theek hai, itte baithao jo.

0: FM 88
1: सिंध की आवाज। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: लाड़काने वसल लाए खुशखबरी, डॉक्टर अजीत कुमार सचदेव MBBS FCPS डर्माटोलॉजी चमड़ी जे बीमारिन जो माहिर हिते मोहिड़ा डडर मलो पुरानी खारिश वार चरो पुरानो फट चित्री लेशमेनियासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब थन वारन जा मसला एलर्जी ऐं औरतन जे चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वजी थो। याद रखंदा सिर्फ जुलाई महीने जी हर जुमे ते चमड़ी जे मरीजन जी मुफ्त चकास कई वेंदी। डॉक्टर अजीत कुमार सचदेव चमड़ी जे बीमारिन जो माहिर एड्रेस अली हॉस्पिटल वगड़ रोड लाड़काणो। टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं ऐं आचर ते क्लिनिक बंद रहंदी। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03124344689।
4: खूबसूरती वो जो नजर आए जैसे इन फूलों की बागात में, कुदरत के हसीन नजारों में और चेहरे की खूबसूरती नजर आती है। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम एडलवाइस एक्सट्रैक्ट क्रिस्टल व्हाइट एक्टिव कंबाइन व्हाइटनिंग फॉर्मूला डे एंड नाइट ब्यूटी क्रीम जो स्किन के अंदर लहर तक जाकर असर दिखाए, जेल से डार्क स्पॉट्स रिंकल्स और दाग धब्बों को मिटाकर स्किन को क्लियर करे, दिन ब दिन जेल्द को ब्राइट करे, 3 दिनों में चेहरे को गोरा और खूबसूरत बनाए और चेहरे को दे फूलों जैसी ताजगी हर रोज। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम आ प्रोडक्ट ऑफ 5-स्टार कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल। हेल्पलाइन नंबर
5: 0307-346-8474। के छिन गले जो गुदूद, पिते जी पथरी, थायराइड, मोका, पेट ए छाती जो बीमारियों या कहें भी आप

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

कंपनी का पाँच स्किन जो ख्याल रखो पवे उन प्रोडक्ट सिलेक्ट कर में वाकई मुश्किल पेश होंगी यो चाहिए तक भी मूँ अस मौजूद है जी भी प्यारा प्यारा मूँ असो प्रोग्राम बुधन पाया उन जिंदगी में थोड़ी आसानी पैदा थी वे उन्होंने बुधाओ वे तो बाबा कड़ा प्रोडक्ट आए जी मार्केट में तुम ईजीली वही परचेज कर सो परचेज करा फायदा मिलता उ फायदा जी तुझा जी तवी जिंदगी थोड़ी आसान थी वे समझो था तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से तो आप भी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के साथ साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने भी वाले हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम बता सकें आप लोगों को मजीद उस प्रोडक्ट के बारे में कि जो अगर आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप

ओके जी, ये आजकल नेटवर्क का बड़ा मसला है भाई, पता नहीं क्यों इतना परेशान किया हुआ है, ना वाईफाई ठीक चल रहा है ना नेटवर्क सही चल रहा है, अलाए छा थींदो असांजो। जी दुआ ही कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो भाई जान आपको वेलकम एंड खुशामदी। ऐसे के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 3151790595 नंबर, जल्दी से डायल कीजिए ताकि आप की करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाए, आप रह ना जाए भाई, क्योंकि आप भी इस्तेमाल करें स्किन ब्यूटी क्रीम, ये इतना परफेक्ट इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जानेंगे कि वाकई भाई सिदरा तसफा सही पई जावे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तमा के डी स्किन फेस वॉश भी मिली रहे हुआ है, अगर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना चाहो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार थियल है, डॉक्टर जी निगरानी जी अंदर तैयार थियल प्रोडक्ट आए, सफा प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आए, तुम लगाए दे तो तुम की अमीरन वाली फीलिंग ही, तो तुम लाजमी जी स्किन ब्यूटी

अच्छा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो ऐं नेटवर्क जो मूंखे लॻे थो काफ़ी मसलो आहे सो लाइव बि थोरो डिस्टर्ब थिए पियो असांजो ओके जी सो नाज़िश असां सां गॾु मौजूदु आहे नाज़िश लाड़काणे खां असांखे ॿुधे पई असांजी सोणी नाज़िश टॉपिक ते तव्हां चयो आहे ठीकु आहे और आगे जो आपने गाना लिखा है ना वो आगे आपका जो सारा मैसेज है वो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट हो चुका है ये आज नेटवर्क की वजह से शायद हो रहा है तो मेरी जान आपको वेलकम कहा जाता है और हैप्पी गर्ल कहते सिडो जाने लोग कहते हैं पैसा हो तो कुछ करें पैसा कहता है कि तुम कुछ करो तो मैं आऊं बिल्कुल सही बात बहुत अच्छी बात और ये हमारे साथ यासीन गुडाड़ो सकरण से कहते असां खुश आयूं तां बुधायो कीअं आयो सिदरा असां टच मोबाइल रखण ई छॾे ॾिनी काफी टाइम थियो आहे सुकून लॻो पियो बिल्कुल तव्हां सही था चओ टच मोबाइल बाबा आज़ार आज़ार और दिलरुबा कहती अस्सलाम वालेकुम मुस्कान जानी क्या हाल है नाइस यो और भाई यासीन खंड और सब सुनने वालों को सलाम दीजिएगा ओके दिलरुबा चाचा खालिद कहते हैं एफ बी ते शो स्टॉप थी वयो हा लगे पयो त नेटवर्क जो काफी मसलो आहे पर लाइव त हले पयो पो लाइ मसलो हूंदो थोरो स्ट्रीमिंग जो और नखा अलावा ये हैप्पी गर्ल कहती सिडो जानी आप अच्छा कहती आप बहुत अच्छी वो इंसान बहुत खुश नसीब होगा जिसके नसीब में आप हो यो तो तवां के लगे तो न मां झुंडी आया झुंडी अल्लाह उन्हें खैर करे अल्लाह

ओके जी ओके. और दिलरुबा कहती है टॉपिक चंदा यूएसबी है उसमें कॉपी करके फिर मोबाइल में रिमूव कर दूंगी. ओके ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. किशोर भाई कहते हैं अदाओ अदा रात 4 बजे पोतो आए हाँ हेडी थकावट आए यकीन कयो पो भी तुझे शो में आयो आए हाँ कदर कर मुझो चरी कदर आ बाबा कदर आ. बिलाल अली हमारे साथ मौजूद. बिलाल कहती है अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम बिलाल कैसे हैं ठीक ठाक है. और उसके अलावा हैं जी अब्दुल रजाक भाई हली पोटो स्टाप खां तां सने प्रोग्राम बुधो पया मोहब्बतूं आहिनि. ओके दिलरुबा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे. आमिर कहते हैं आपका शो लाइक और शेयर कर दिया है थैंक यू जी.

अच्छा अली अकबर ब्रोही भा हमें सक्रिय से सुन रहे हैं, कहते हैं सिद्रा जी दोस्त के साथ आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा सॉन्ग आपने लगाया है। ओके जी, थैंक यू सो मच, आप दोनों भाइयों को वेलकम करते हैं। बिलाल कहते हैं कि अचण वारा केतरा भी खूबसूरत छो न हुजन पर विञण वारन जी जगह नथा वठी सघन। बिल्कुल तमाम सही था जो। अच्छा चाचा खालिद कहते मुखे डी इसके ब्यूटी क्रीम सुठी लगी डिसण में आई एम। चले ठीक है, फिर आप परचेज कीजिएगा, डिसण में सुठिया लगाने में उनका वधिक ताँ की मजो अची वेंदो। ओके जी, अली मुर्तज़ा कहते हैं कि मुज़म्मिल चांडियो अली मुराद अंसारी भी यू को सुन रहे हैं, सब मी को सुन रहे हैं, सबको वेलकम। आज नेटवर्क जो है ना वो आप लोगों को सही से मुझे सुनने नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं जी, कभी कभी होता रहता है बड़े बड़े शहरों में। अच्छा अनवर भाई कहते प्रो में प्रोग्राम सही पे हाँ भाई दुनिया हेॾे जो होॾे थी वञे पर मोरो में प्रोग्राम असांजो सही हलंदो आहे। थैंक यू मोरो वारो।

ओके जी, दर्द दिल हांसी बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू आप हमारे साथ हैं. और उसके अलावा ये हमने लास्ट में गाना लगा लिया है जी, जा तुझे माफ किया. हमने भी सबको माफ कर दिया, बस आप सभी मुझे माफ कीजिए. क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि तकरीबन बहुत से लोगों के गाने और फीडबैक्स रह चुके होंगे प्रोग्राम में. चलें कोई बात नहीं. और साइमा मीर कहती माशाल्लाह जी, दर्द दिल हांसी बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू आप हमारे साथ हैं. और उसके अलावा ये हमने लास्ट में गाना लगा लिया है जी, जा तुझे माफ किया. हमने भी सबको माफ कर दिया, बस आप सभी मुझे माफ कीजिए. क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि तकरीबन बहुत से लोगों के गाने और फीडबैक्स रह चुके होंगे प्रोग्राम में. चलें कोई बात नहीं. और साइमा मीर कहती माशाल्लाह बेशक अला कंदो वो भी जिनड़ो ही हूंदो पोत मौजू ही मौजू गुड लक. हाँ वैसे चवंदा आहिनि जेड़े के तेड़ो मिलंदो आहे. सही आहे, सहलेंगे थोड़ा सा.

न किशोर भाउ थोड़ो बियो मसलो तव्हांजा सभु कॉमेंट मूं पढ़ी छॾियां प्रोग्राम में. जवान मोहम्मद बचल शबानी भाई वालेकुम असलाम, तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे जी, मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं बि.

0: शुक्रिया जी। सो गाना सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, इस गाने को एंजॉय कीजिए। और गाने के साथ ही जरा मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। ओके जी, यहाँ पर फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं। मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं?
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jaldi allergy aur kharish ke liye.
0: Panjo do suno khayal rakhna. Kehte ka galti thi, mujhe ta maazrat kayun tha. Aye acha Rehana hamare sath hai Bakhar se, aapko welcome. Abid Birohi bhai hai, aapka bhi bahut shukriya ji, aap join karte ja rahe hain program aur aise hi join karte raha kare, aur aapka bahut shukriya. ओके जी, सो पंज बजे वाले प्रोग्राम में लूँ था पंज बजे जो मुख्य ज्वाइन के जो नेटवर्क जो थोड़ो मसलो जो लगे तो वही हो नेटवर्क थोड़ो हिना आसान नेटवर्क खराब हों गाल समझ में नहीं हाँ करण चाहिए। सो चलें जी, बस टाइम पूरा थी तक इजाज़त वूँ था मोकलानी ना सन सलामत सा सलामत पाँच लाइन ख्याल रखना है जी। स्किन ब्यूटी क्रीम हो या वही वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल तुम लाजमी कह रहो जी, तक खबर पे तो बाबा मार्केट में केडा मजेदार केडा जबरदस्त प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो इस्तेमाल कहना रहो पानी खूबसूरती के जो आज सो वेलकम कर।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
5: तो बनायो अमेरिकी हमलन के नतीजे में 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास डां ईंदड़ वींदड़ रस्तन रेलवे ट्रैक्स ए पुलन के तबाह कयो वयो। बो शहर लोरिस्तान ए बेन शहर में बिजली घरन पुलन लेवल ए फौजी अड्डन ते हबे हमला। अमेरिकी हमलन में गुलिस्तान सूबे में ईरान ए रूस के रेल जरिए गंढींदड़ पुल भी तबाह थी वही। अमेरिकी सेनेट काम मौजूद ईरान की दिफाई ए

Parece di. ॿारहं अरब डॉलर जा ज़ब्त थियल सासन जारी करण वारे मुआहिदे खे हतमी शकल ॾिनी वई आहे। आबनाह मुज़मिन जहाज़नि जी अच वञ जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। ईरानी पार्लियामेंट बाकर काले बाफ़ जे स्पीकर जो बयान

ईरान यूरेनियम बाहिरो माण्हुनि बदिरां रचाव जी सत घटाए न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो अरब मीडिया इंटरव्यू इसहाक़ डार चयो त अमेरिका अॻ में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम ॿाहिरि

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट सुबुह

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GFM 88
3: नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़।

अमेरिका जा ईरान ते सतेनीअ बि मिज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद, 20 ज़ख़्मी। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रेक्स ऐं पुलनि खे तबाह कयो वियो। बोशेर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि जे बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि ते बि हमला। अमेरिकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई। अमेरिकी सेनेट खां मौजूदु ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरीन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी वार। अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब मूजिबि उर्दन में हमलनि जे नतीजे में अमेरिकी वेढ़ाक जहाज़ तबाह थिया आहिनि। ओमान में अमेरिका जे जदीद रेडार सिस्टम खे तबाह कयो वियो। शाम में बि अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह कयो आहे, जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई अमेरिकी फ़ौजी बि मारिजी विया आहिनि। कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तस्दीक करे छॾी। $12 अरब जा ज़ब्त थियल असासन जारी करण वारे मुआहिदे खे हतमी शकल ॾिनी वई आहे। आबन हरमुज में जहाज़नि जी अच वञ जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइमु करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ़ जे स्पीकर जो बयान। बाकर कालेबाफ़ चयो त आबन हरमुज जो इंतिज़ाम ईरानी क़यादत ई तय कंदी। ईरान यूरेनियम ॿाहिरि उमाणण बदिरां रचाव जी सतह घटाए न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म एसाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। एसाक डार चयो त अमेरिका अॻु में ई मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो वञे। आबन हरमुज़ मां जहाज़ 60 ॾींहनि ताईं ट्रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टैंडर्ड नेविगेशन जा सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रंप ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौरु रहनुमाई कई। सऊदी अरब, कतर, मिसर ऐं गॾियल अरब इमारात रेकाड़ीअ खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो सख़्त थी सघे थो। डील में को बि नाकारी नुक़्तो शामिल नाहे। गॾियल क़ौमनि जे ईरान ऐं विच ओभर में शहरी हंधनि ते हमलनि जी मज़म्मत। एंथोनी गोतरेस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खे निशानो बणाइण ते ॻणितीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त अहिड़ा हमला क़बूलण जोॻा न आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस वाना में दहशतगर्दी जी वॾी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि फोर्सिस ॾखण वज़ीरस्तान जे इलाइक़े वाना में बारूदी मवाद सां भरियल गाॾी तबाह करे छॾी। कार्रवाईअ में हिकु ख़ारजी जहनम भेड़ो ऐं 5 दहशतगर्द ज़ख़्मी थिया। गाॾी में मौजूदु धमाकेदार मवाद दहशतगर्द हमले में इस्तेमालु थियणो हो। तेल जा अगर रोज़ मुक़ररु जो फ़ैसिलो त थी वियो, छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा अघ बि रोज़ानो मुक़ररु थींदा? छा रेलवे जो किरायो बि रोज़ तब्दील थींदो? पेट्रोल सां गॾु छा सब्ज़ी, गोश्त ऐं फ्रूट्स बि रोज़ महांगा ऐं सस्ता थींदा? पेट्रोल अघनि जे रोज़ाने वारे फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया। अवाम परेशान। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त असां ख़िदमत जी सियासत ते यकीन रखूं था। सभिनी खे गॾिजी मुल्क जी तरक़ीअ लाइ किरदारु अदा करणो पवंदो। सियालकोट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ख्वाजा आसिफ़ चयो त सियालकोट जी तरक़ी ॾिसी दिलि ख़ुशि थींदी आहे। मरियम नवाज़ सियालकोट जी तरक़ीअ लाइ वधीक अरबे रुपियनि जा फंड्स रखिया आहिनि। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी सदारत हेठि बस डिपोज़ लाइ ज़मीन जी फरहमी बाबति इजलास। शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत पारां 50 डबल डिकर बसूं ऐं 500 इलेक्ट्रिक बसूं ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिलु कयूं पयूं वञनि। डिपोज़ लाइ घुर्बल एराज़ीअ जी निशानदेही ऐं फरहमी वारे अमल खे फौरी मुकमिल कयो वञे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे।

0: लेडी हेल्थ वर्कर्स जो मुतालबन की मंता लाई गई खुदा बख्श भुट्टो में शहीदन के मजार नालो एहतजाज मुख्तलिफ़ इलाकन में आयल औरतन लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के PPHI में जिम करने खिलाफ मुजाहरो कयो। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो चवण हो तो सेहत खाते में PPHI प्रोग्राम में जिम करण वारो फैसलो नौकरियों के तहफ़ खिलाफ है। सालन का दौरान इलाकन में बुनियादी सेहत जूस खिदमतू सर अंजाम दे रही आयू। गड़ी खुदा बख्श में एहतजाज जो कारण यो है तो ही प्रोग्राम शहीद बेनजीर के दौर में शुरू किया वो हो। हुकूमत यो फैसलो फौरी तौर वापस वे असा के सेहत खाते के मुलाजिम तौर बरकरार रखो वे। कराची में बारन जी सब का वही अस्पताल NICH में सिक्योरिटी न मिलने ते यंग डॉक्टर जो पंजे डी बे एहतजाज मरीजन जी दाखला जो बायकॉट कयो वयो। अगवानन चयो ते अस्पताल में सिक्योरिटी निजाम नाकाम थी चुको आहे जें सबब डॉक्टरन खे हिरासां करण तशद्दुद जानी ए माली हमलन समेत पेशावरानी जिम्मेवारियूं निभाण में रुकावटूं पेश अची रहियूं आहिनि। मुतालबा मंजूर न थियण ताईं एहतजाज जारी रखियो वेंदो। जसकम के मरकजी सर ते कारकुनन के गिरफ्तारी ने बारन के अगवा खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा पिंगरियो में जसकम कारकुनन प्रेस क्लब अगे एहतजाजी मुजाहरों कर धरणो हो। फुल में कारकुनन अमरोटी चौक का प्रेस क्लब तई एहतजाजी रैली कढ़ी। फुलजी स्टेशन में कारकुनन एहतजाजी रैली कढ़ी प्रेस क्लब अगे मुजाहरों कयो। नवाब शाह खिपरो टंडो आदम में भी एहतजाजी मुजाहरा गुम थियल कारकुनन की आजादी ए अगवा थियल समूरन बारन की फौरी ए बाजियाबी जो मुतालबो। लाड़काने में जिया गैंग के इनाम रखल बिन डोहारियों समेत 14 जणन गिरफ्तारी दे छी। 20 लख इनाम रखल गुलाब जियो 5 लख इनाम रखल गहराम जियो समेत 14 जणा पुलिस वट पेश। घरू वजीर ज़ियाल अंजार है तो मजमू तौर 28 जणन हथियार फिटा कया 15 साल का हलंदड़ कबायली तकरार खत्म थी वो है। तकरार दौरान 28 जानू विजी व्यू लगभग 2000 एकड़ जरई जमीन वीरान थी वही गोठ उजड़ी वया। गंबट में मुसाफिर वेन कार में टक्कर के नतीजे में औरतन समेत 15 जणा जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कौमी शाहरा ते सचल गेट सामू मुसाफिर वेन कार से टकराई वही। हादसे जा समूरा जख्मी गम्स अस्पताल मुंतकिल। जख्मी में नासिर थईम बिलावल कंबुआ आबदा सिद्दीक सरोई ए बया शामिल आहिन। मलीर के गडाप टाउन में पीण के पानी जो शदीद बहरान। साले मोहम्मद जुमानी गोट के रहवासियों जो नादरन बायपास से धरणो ट्रैफिक मुअत्तल थी वही। रहवासियों चो तो साले मोहम्मद जुमानी समेत भर पासे के 50 गोठन में पीण जो पानी अणलभ है। गडाप टाउन ए KMC इन वक्त ताई पीण जो पानी के स्कीम भी नाहे दिनी। तालीमी बोर्ड सखर 10 क्लास के सालियाने इम्तिहान जा नतीजा पधरा कर छिया। ईमान हफीज ए उमर रियान पेरी पोजिशन माणी। आसफा मेसर बी आयशा अब्बास टी पोजिशन ते आई। छोकरन मां उमर रियान पेरी जरियान अहमद बी ए साहिल अब्बास टी पोजिशन हासिल कई। 6349 शागिर्दन A1 ग्रेड हासिल कयो। शहीद शाहनवाज भुट्टो की 41 वर्सी मल्हाई वे पई। नओ देरो हाउस में तकरीब ए कुरान खानी। शहीद शाहनवाज भुट्टो की न्याणी ससी भुट्टो ए खातून अवल आसफा भुट्टो जरदारी नओ देरो हाउस पहुंतियूं। शहीद शाहनवाज भुट्टो समेत शहीदन के मजारन ते हाजिरी भरे गुल निछावर कया वया। अगवानन जो चवण है तो शहीद शाहनवाज भुट्टो आमरियत खिलाफ जिदोजहद कई। मुखालिफ कुवतन के जहर दई शहीद करायो। शहीद शाहनवाज भुट्टो की जिदोजहद नौजवान लाए मशले राह है। बिलावल भुट्टो जरदारी शहीदन के मिशन के अगते वधाइंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज।
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन
3: अमेरिका जा ईरान जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक हमला ॾखण ऐं विच ईरान वारनि इलाइक़नि में पुलनि, बिजली घरनि, सुरंगनि ऐं सामूंडी पाणी मिठो कंदड़ प्लांट्स खे निशानो बणायो वियो। हमलनि में शहीद थियल चइनि औरतुनि समेत 8 ॼणनि जूं तस्वीरूं बि जारी, केतिरा ई ज़ख़्मी। ईरानी मीडिया मूजिबि अमरीका मेरीटाइम कंट्रोल टावर खे निशानो बणायो। जासिक बेट ते हज़ारनि शहरियुनि खे पाणीअ जी फ़राहमी मुअतल थी वई। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ऐं रेलवे ट्रैक खे बि तबाह कयो वियो। अमरीकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ तबाह थी वई। अमरीकी सेंटका मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। ईरानी फ़ौज जा कुवैत, उर्दन ऐं बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ते जवाबी वार। सऊदी अरब जे शहर अलखरिज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो वियो। उर्दन ऐं कुवैत पारां ईरान जे समूरनि मिज़ाइल्स खे तबाह करण जी दावा। कुवैत ईरानी हमलनि सां बि बिजली घर ऐं डीसिलिनेशन प्लांट मुतासिर थियण जी तस्दीक बि करे छॾी। अमरीकी मीडिया जो चवणु आहे त उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ते ईरानी हमलनि दौरान केतिरा ई फ़ौजी ज़ख़्मी थिया आहिनि। हाणे जंग सां गॾु गालियुनि वारी पॉलिसी ख़तम थी वई। ईरान अमरीकी हमला जारी रहण जी सूरत में तकरार खे इलाक़ाई जंग में तब्दील करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे सीनियर फ़ौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान जी हिकमत अमली जवाबी कार्रवाई ते ॿधल आहे। दुश्मन मिज़ाइल फायर कंदो आहे त तेहरान जो जवाब हुन खां वधीक ताक़तवर हूंदो आहे। ईरान जो बुनियादी मक़सदु दुश्मन खे सबक़ सेखारण ऐं जंग जो ख़ात्मो आहे। गॾियल क़ौमनि में ईरान जे नुमाइंदे पारां ईरान जे इंफ्रास्ट्रक्चर ते हमला बंदि कर मुतालबो। ईरानी परॾेह वज़ीर अब्बास राखी चयो आहे त आख़िरी साह ताईं वतन जो दिफ़ा कयो वेंदो। अमरीकी हमलनि में शहीद थियल ईरानियुनि जो खून ज़ाया थियणु न ॾींदासीं। नायब वज़ीर आज़म साहकार जी गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोतरे सां मुलाक़ात। इलाक़ाई ऐं आलमी मामलनि बाबति ॻाल्हि ॿोल। नायब वज़ीर आज़म जी इंडोनेशिया जे इक़्तिसादी मामलनि वारे वज़ीर सां बि मुलाक़ात। इसाकदार अरब मीडिया खे ॾिनल इंटरव्यू में चयो आहे त ईरान यूरेनियम ॿाहिरि उमाइण बदिरां रचाव जी सतह घटाए। अमरीका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो वञे। आपना हुर्मुस मां जहाज़ 60 ॾींहनि ताईं टैरिफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टैंडर्ड न्यूविकेशन या सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रंप ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौरु रहनुमाई कई। सऊदी अरब, कतर, मिस्र ऐं गॾियल अरब अमारात चाकड़ी खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस बाना में दहशतगर्दी जी वॾी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। बारूद सां भरियल गाॾी धमाके खां पहिरियां ई तबाह। कार्रवाई में हिकु ख़ारजी जनम भिड़ो। 5 दहशतगर्द सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि गाॾी में धमाकेदार मवाद इम्कानी तौरु दहशतगर्द हमले में इस्तेमालु थियणो हो। घरू वज़ीर पारां फोर्सिस खे भेटा पेश। बचाव वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त असां ख़िदमत जी सियासत ते यकीन रखूं था। सभिनी खे गॾिजी मुल्क जी तरक़ी लाइ किरदारु अदा करणो पवंदो। सियालकोट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ख़्वाजा आसिफ चयो त सियालकोट जी तरक़ी ॾिसी दिलि ख़ुशी थी आहे। मरियम नवाज़ सियालकोट जी तरक़ी लाइ वधीक अरबनि रुपियनि जा फंड जारी कया आहिनि। तेल जा अघु रोज़ मुक़रर जो फ़ैसिलो त थी वियो। छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा अघु बि रोज़ानो मुक़रर थींदा? छा रेलवे जो किरायो बि रोज़ तब्दील थींदो? पेट्रोल सां गॾु छा सब्ज़ी, गोश्त ऐं फ्रूट्स बि रोज़ महांगा ऐं सस्ता थींदा? पेट्रोल अघनि जी रोज़ाना वारी फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया अवाम परेशान। लेडी हेल्थ वर्कर जो मुतालबन की वहींता लाए गरीब खुदा बशपुटो में शहीद की मज़ार नाडो एहतजाज मुख्तलिफ़ लाइक आयल औरतों ने लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के पीपीएचआई में जिम करने खिलाफ़ मुजाहरों को लेडी हेल्थ वर्कर्स चवण हो तो सेहत खाते में पीपीएचआई प्रोग्राम में जिम करने वो फैसलो नौकरी के तहफ़ खिलाफ़ है। साल का दौरान इलाक़ में बुनियादी सेहत जो खिदमतों सरअंजाम दई रही आयु घड़ी खुदाबश में एहतजाज जो कारण इो है ये प्रोग्राम शहीद बेनजीर के दौर में शुरू करो हुकूमत यो फैसलो फौरी तौर वापस वटे असा के सेहत खाते के मुलाजिम तौर बरकरार रखो वे। जस्कम के मरकजी सट से कारपोरेट की गिरफ्तारियों बारडन के अफवाह खिलाफ एहतजाजी मुशायरा दातू सरहाड़ी ए पिंगरियो बेन शहर में कारपोरेट एहतजाज कर थुल पुलजी स्टेशन नवाबशाह खिपरो टंडो आदम में भी एहतजाजी मुजाहरा क्या वह गिरफ्तार कियल कारपोरेट की आज़ादी ए सूबे में अफवाह थियल बारन की फौरी बाजियाब जो मुतालबो।

0: जेल भी थी सके थी ऐं इन सां गॾोगॾु फाइन भी उन ते थी सघे थी हाणे कहिड़ी सिचुएशन में चेक बाउंस में जेको आहे त इहो सेक्शन अचे पियो ऐं उन ते तव्हां इहा कार्रवाई कीअं कराए सघो पिया ऐं फॉर इंस्टेंस तव्हां खां जेको आहे त चेक कंहिंखे मिली वञे पियो ऐं डिसऑनेस्टी छा पए न पई थिए अॻिलो तव्हांखे जेको आहे त प्रेशर विझी रहियो आहे इलीगल तरीक़े सां तव्हां खां पेमेंट वठी रहियो आहे त उन मुतालिक सॼी अॼु जेका आहे नॉलेज तव्हांखे मिलंदी ऐं तव्हांजो कॉन्सेप्ट बि तक़रीबन क्लियर थी वेंदो. स्टूडियोज़ में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि, एडवोकेट हाई कोर्ट आहिनि ऐं 10 सालनि खां वठी तक़रीबन एडवोकेसी सां वाबस्ता बि आहिनि, लेक्चरार आहिनि लॉ कॉलेज में एज़ वेल एज़ तमामु घणा हिननि जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि जेके आहिनि क्वालिफाई थियल आहिनि, यानी नॉलेज हिननि खे तमामु सुठी आहे लॉ जे मुतालिक़ जेका असांखे हर वीक असांखे ॾींदा आहिनि ऐं असांजी नॉलेज में यकीन इज़ाफ़ो कंदा आहिनि. सो शहबाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियोस.
1: वालेकुम सलाम बाबर.
0: शहबाज़ साहब अॼु जो असांजो टॉपिक जीअं आहे चेक बाउंस. अक्सर तव्हांखे ख़बर आहे त चेक जंहिंखे ख़बर न हूंदी आहे खणी उहो त ईअं पर्ची टाइप ॾेई छॾींदो आहे ऐं जॾहिं हिन सेक्शन खे जॾहिं हू ॾिसंदो ऐं उन ते ॾिसे पियो त सज़ा इहा कीअं थी सघे पई त मां सम्झा पियो चेक ॾियण खां पहिरां उहो ज़रूरु सोचींदो थिए यार चेक ॾियणु घुरिजे या न. सो सभ खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां हिन सेक्शन ते थोरो ओवरव्यू ॾियो त इन जी लीगल डेफिनेशन आहे छा.
1: सेक्शन 489F
0: जी,
1: डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक, जेके असां चवंदा चेक बाउंस. बिफोर जंपिंग ग्रेवली इन टू दिस टॉपिक, मां हिकिड़ो कुझु कॉन्सेप्ट आहिनि उहे क्लियर कंदुमि जेके असांजे ॿुधण वारा आहिनि ॾिसण वारा आहिनि. बाउंस खां अॻु में त असांखे इहा ख़बर हुजे त चेक ऑनर कीअं थींदो आहे ऐं चेक डिसऑनर
0: कीअं थींदो
1: आहे. चेक ऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की वेन अ चेक इज़ बींग प्रेज़ेंटेड बिफोर द बैंक एंड द बैंक रिसीव्स इट एंड देयर ओन विड्रॉ द कैशिस टू द पर्सन टू होम द चेक इज़ बीन गिवन. ठीकु आहे त हिकिड़ो माण्हू हुनखे ऑनर ॾिनो, ठीकु आहे, हुनजी तस्दीक कई, तस्दीक करण खां पोइ हुनखे जेको आहे न अमाउंट कढी ॾेई छॾियो. डिसऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की चेक जॾहिं ॾिनो वियो, वेन द चेक वॉज़ गिवन ऐं चेक वॉज़ रीच टू द बैंक, बैंक मैनेजर या बैंक जो कोई बि अमलो जेको बि हुते वेठो आहे प्रेज़ेंट कैशियर आहे, सो ही विल सी फ्यू पॉइंट्स की अगरि उहे हुन लीगल पॉइंट्स अगरि लहनि था पिया त ठीकु आहे, अदरवाइज़ चेक विल बी डिसऑनर. जीअं मिसाल चेक डिसऑनर कहिड़ी सूरत में थींदो आहे त सभ खां पहिरियों इनसफिशियंट फंड हुजे, चेक में अल्टरेशन हुजे. त कॾहिं कॾहिं अल्टरेशन जो सीन इहो हूंदो आहे, मक़सदु पर्पज़ इहो हूंदो आहे अल्टरेशन जो की अमाउंट हिकिड़ो लिखियलु आहे, अमाउंट में कॾहिं असां ज़ीरो वधाए छॾंदाऊं, कॾहिं अघ खे चेंज करे छॾंदाऊं,
0: कॾहिं
1: करेक्शन थियल, अल्टरेशन चवंदा आहिनि. ॿियो या त अकाउंट सीज़ त न आहे, टियों ट्रांसेक्शन टाइमली रुकी वई आहे या ट्रांसेक्शन रुकाई वई आहे. सो कुझु ॻाल्हियूं हुननि खे ॾिसी करे चेक खे रिटर्न कयो वेंदो आहे, हुन रिटर्न ऑफ चेक खे चवंदो आहे डिसऑनर ऑफ चेक. ऐं ॿियो इन खां अलावा हटी करे टे शयूं ॿियूं बि आहिनि जेके सम्झणु लाज़मी आहिनि हिन चेक वारे इशू में. सभ खां पहिरियों असांखे इहो ख़बर हुजे त ड्रावर केरु आहे, ड्रावी केरु आहे ऐं पेई केरु आहे. तव्हां अगरि चेक खणी ॾिसंदो त हमेशह चेक जे मथो लिखियलु हूंदो आहे पेई, हुनजे अॻियां लिखियलु हूंदो आहे बीअरर. पेई उहो माण्हू आहे जंहिंजे नाले ते चेक इज़ बींग इशूड, ठीकु आहे, जेको चेक विड्रॉ कराए सघे थो. ड्रावर उहो हूंदो आहे द वन द पर्सन हू इशूज़ अ चेक, जेको चेक इशू कंदो फॉर द पर्पज़ ऑफ कोई भी ट्रांसेक्शन अगरि हुन कई आहे या हुन को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हुनजी रहे थी पई या को प्रोमिस हुन कयो आहे या रीपेमेंट ऑफ लोन आहे, त उहो हिकिड़ो स्पेसिफिक अमाउंट लिखी ॾींदो जेको पेई वञी करे हुनखे विड्रॉ कराईंदो. हाणे किथे विड्रॉ कराईंदो, हुनखे चइबो आहे ड्रावी. ड्रावी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे हुनखे अमूमन असां हुनखे बैंक चवंदा आहियूं, द प्लेस वेयर द चेक इज़ बींग ड्रॉ या फ्रॉम द पेमेंट इज़ बींग टेकन, हुनखे असां छा चवंदा
0: आहियूं
1: बैंक ड्रावी चवंदा आहियूं. ठीकु आहे, इहे कॉन्सेप्ट मिलाए करे असां छा कंदा आहियूं त इहो कॉन्सेप्ट मिलाए करे इहे सॼे कॉन्सेप्ट ते असां चवंदा आहियूं इहो चेक सां रिलेटेड आहे ऐं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सां रिलेटेड आहे. ऐं अगरि इन में बदनीयती अची वञे ऐं उनजो मिसयूज़ थी वञे, उन कॉन्सेप्ट ते इहो पूरो सेक्शन बीठल आहे 489F, डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक, चेक बाउंस थी वञणु.
0: अच्छा, मतलबु जेको आहे बदनीयती साबित थिए तॾहिं ई सेक्शन थिए पियो, अदरवाइज़
1: बदनीयती ईअं आहे बाबा. त मां रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी हिकिड़ी अथॉरिटी पढ़ां पियो, उनमें टे इनग्रीडियंट्स इंपॉर्टेंट आहिनि डिफाइन करण जे लाइ त वाकई उनमें जेको आहे न चेक जेको बाउंस थियो आहे उनमें टे शयूं अगरि लाज़मी आहिनि त चेक डिसऑनेस्टली बाउंस थियो आहे. सपोज़ सभ खां पहिरियों इशू, उहो कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे, कंहिं इशू कयो आहे, ठीकु आहे, ॿियो हुन में ॾिठो वेंदो त जे पर्पज़ सां इशू कयो आहे हुनजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन्स छा आहिनि, ठीकु आहे, छा उहो प्रोमिस जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, रीपेमेंट ऑफ लोन जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, हुनजी लीगल कैपेसिटी छा आहे, उहा कंहिं एग्रीमेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिनो वियो आहे. टियों पर्पज़ इहो आहे त चेक इशू करण जे टाइम, चेक इशू करण जे टाइम छा उन में डिसऑनेस्टी शामिल हुई.
0: Okay.
1: अगर डिसऑनेस्टी शामिल हुई त जेको आहे न चेक डिसऑनर या हुनखे छा चवंदो 489F डिसऑनेस्टली इशूइंग द
0: चेक,
1: माज़रत सां डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक.
0: ऑल राइट शहबाज़ साहब, जीअं अवां ॻाल्हि कई मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि त रीज़न्स थी सघनि पिया चेक जेको आहे डिसऑनर थिए पियो, हुन में हिकिड़ो रीज़न इनसफिशियंट बैलेंस बि थिए पियो.
1: जी जी.
0: फॉर एक्सटेंस अगरि ॻाल्हि कयूं कंहिं लख रुपए जो चेक कंहिं ॾेई छॾियो, ठीकु आहे, ऐं कोई बि बैंक चार्जिस कॾहिं कॾहिं कटिजी वञनि पिया, मंथली तव्हांखे ख़बर आहे त डेटा या बंडल एक्टिव हूंदा आहिनि, पोइ उहो जेको आहे न इनसफिशियंट बैलेंस जी वजह सां बि जेको आहे न चेक रिटर्न हलियो वेंदो आहे, त छा इहो अचे पियो डिसऑनेस्टली हिन में इन सेक्शन जे अंडर?
1: बदनीयती डिसऑनेस्ट, माना अगरि बदनीयती खे सभ खां पहिरियों डिफाइन था कयूं कि सिचुएशन छा हुई. हिकिड़ो माण्हू मुआदो थो करे, कोई बि हिकिड़ो लीगल एग्रीमेंट थो करे कि मां तव्हांखां गाॾी हिकिड़ी मोटरसाइकिल आहे जेकी तव्हांखां मां 2 लख रुपए में वठां हूंदो, फॉर एग्ज़ाम्पल. हाणे हुन 1 लख जो तव्हांखे नेट कैश ॾेई छॾियो, जेको ॿियो चेक आहे हुन छा कयो, बकाए जेकी पेमेंट आहे उहा चेक जी सूरत में तव्हांखे हुन हैंड ओवर कयूं, त हिन ई महीने जे अंदरि 15-15 ॾींहं जे डिफरेंट सां तव्हां 2 डिफरेंट चेक डिफरेंट हुन स्पेसिफिक डेट ते वञी करे तव्हां विड्रॉ कराए सघो था.
0: सही.
1: लख रुपियो हुन ॾेई छॾियो, ट्रांसेक्शन थी वई, कंसिडरेशन थी वई. कारण कंसिडरेशन में हिकिड़ी टर्म तव्हां पढ़ी आहे, क्विक पूरो कयो, मतिलबु रिटर्न ऑफ समथिंग. रिटर्न ऑफ समथिंग में छा आहे, तव्हां गाॾी हैंड ओवर करे छॾी, हाणे तव्हांजे लाइ कंसिडरेशन अमाउंट आहे, हिकिड़ो हाफ अमाउंट मिली वियो, हाफ अमाउंट रहे थो. हाणे 50,000 जा हुन ॿ चेक तव्हांखे ॾेई छॾिया. फॉर सपोज हुन तव्हांखे 1 लख रुपियो ॾिनो, 1 लख रुपए खां पोइ हुन पहिरीं ट्रांसेक्शन थ्रू कराए छॾी, जंहिंमें तव्हां कैश विड्रॉ करे छॾियो. लेटर ऑन कुझु रीज़न्स जे करे या कुझु एमरजेंसी जे करे हुन पैसा अमाउंट विड्रॉ कराए छॾिया, ठीकु आहे. हुन में हुन बदनीयती ज़ाहिर नथी थिए, छो त पहिरियों त हुन तव्हांखे 1 लख रुपए हिते स्पॉट ॾिनो, वरी हुन खां पोइ जेको तव्हां पहिरियों जेको चेक आहे जॾहिं तव्हां विड्रॉ करायो त उहो बि हुन में अमाउंट अवेलेबल हुयो, ऐं उहो तव्हांखे सफिशियंट रीज़न ॾिए थो त मां तव्हांखे छोकी कुझु अमाउंट कढाए वरितो आहे, अमाउंट कुझु मां 10,000-15,000-20,000 कढाए छॾिया, बाक़ी जेको आहे न मां तव्हांखे या त हिन चेक जी सूरत में मां हिन में विझराए छॾो त बाद में कढाए छॾो, त हिते डिसऑनेस्टी न आहे. हाणे डिसऑनेस्टी कॾहिं थी क्रिएट थिए, तव्हां खां 1 लख रुपियो तव्हांखे ॾिनई, तव्हांखे गाॾी वरितई, जीअं तव्हां पहिरीं पेमेंट लाइ चेक खे विड्रॉ करण लाइ वियो, उहो थी वियो तव्हांजो
0: डिसऑनर थी वियो.
1: ठीकु, तव्हां सम्झो, ठीकु आहे, इट्स ओके. तव्हां हुनखे ॿुधायो त भाई मुंहिंजो चेक न चयो, ठीकु आहे साईं मां पैसा विझराए थो छॾां. तव्हां वरी ॿीहर वियो, वरी डिसऑनर थी वियो, वरी तव्हां जेको ॿियो चेक तव्हांखे ॾिनी पर तव्हां उन लाइ बि वियो त उहो बि डिसऑनर थी वियो. त नाओ द इंटेंशन शुरू खां ई वठी हिननि जो बदनीयती आहे, शुरू खां ई वठी इंटेंशन हुन में ज़ाहिर थो थिए त हिननि जेको असांखे चेक जेको इशू कयो आहे उन में डिसऑनेस्टी शामिल
0: आहे. मतिलबु डिसऑनेस्टी जेका आहे त उहा जॾहिं ज़ाहिर थिए त अंडर दिस सेक्शन जेको
1: आहे.
0: सो कुझु फीडबैक बि आहे जेको मां प्रोग्रामिंग में शामिल करण वारो आहियां. शहबाज़ साहब, स्क्रीन ते बि काफ़ी सारा मैसेजेस अचनि पिया जेके मां पहिरियों बि अनाउंस करे चुको आहियां त सॼा त शामिल न थी सघंदा आहिनि, टाइम घटि हूंदो आहे, हिन जे लाइ असां थोरा थोरा शामिल कंदासीं. सो हिकिड़ो ही वॉइस नोट ऐं ही छा पिया चवनि अचो ॿुधूं पिया.
2: Assalamualaikum sir, my name is Zubair Ahmed. Sir, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, अगर हमें कोई फेक अकाउंट या क्लोज अकाउंट का चेक दे दे तो उसकी पनिशमेंट क्या बनती है, उसे सजा क्या मिलेगी, तो प्लीज सर हमें गाइड कीजिएगा.
0: अच्छा शहबाज़ साहब, हिननि त फेक अकाउंट जी ॻाल्हि कई आहे, ईअं अक्सर ॾिठा आहिनि मूं बि माण्हू काफ़ी, हुन वटि 3-4 चेक बुक्स हूंदियूं आहिनि, पोइ हुन मां हुनखे जस्ट ख़बर इहा उहो जेको आहे त हासिल करणु चाहींदा आहिनि त असांखे जस्ट टाइम खपे. जीअं तव्हां अॻाणी ॻाल्हि कई त चेक बैलेंस न हूंदो आहे, पोइ हुन ॾे फोन कंदो आहे, चवंदा ठीकु आहे मां बैलेंस विझिरायां थो. हाणे हिन विच में घणा ॾींहं हुनखे मिली विया?
1: बिल्कुलु,
0: छा इहो साबित करण लाइ काफ़ी न आहे त इहा डिसऑनेस्टी आहे, उहो ॾींहं पियो हासिल करणु चाहे जेको क्लियर असां सां ॻाल्हि न पियो करे?
1: सो वापसि हुन टॉपिक ते अची जिते छॾियोसीं, त पहिरियों त तव्हां इंटेंशन ज़ाहिर कंदो. अगरि हिकिड़ो फाइनेंशियल ट्रांसेक्शन थिए थी, उहा कंटिन्यूस आहे, ऑल ऑफ सडन किथे ब्रेक थी थी वञे, कुझु लीगल मामला जे करे या फाइनेंशियल इशूज़ जे करे उहो तव्हांखे हिकिड़ी पेमेंट न ॾिनो आहे, पर असां हुनजी जेकी प्रीवियस इंटेंशन आहे हुनखे ज़रूरु ॾिसंदासीं त प्रीवियसली हुन असांखे जेकी रक़म आहे उहा टाइम ते पेमेंट कंदो आयो आहे. पर जेकॾहिं इंटेंशन शुरू खां ई वठी करे इंटेंशन बदनीयती ते शामिल आहे त उहो डिसऑनेस्टी में हलियो थो वञे, जंहिंजे लाइ असांजे लाइ इहो पूरो जो पूरो सेक्शन अवेलेबल आहे. हाणे एस पर जे तव्हांजो सवाल आहे त फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक अकाउंट आहे या जेको
0: आहे
1: चेक जेको आहे न उहो बि जेको आहे न जाली चेक अथव असांखे ॾे हाणे इहो हिकु न इहो ॿ खां टे सवाल आहिनि सभ खां पहिरियों त हो फोर्जरी क्रिएट करे थो पियो फोर्जरी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की कंहिं बि माण्हू खे डिसीव करणु कुझु अहिड़ो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे जेको हुन जी या त ज़ातियात खे अटैक करे या त हुनखे नुक़सानु पहुचाए हिकिड़ो फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करणु ठीकु आहे ॿियो फेक अकाउंट बि माना ईअं सम्झो त चीटिंग में थो हलियो वञे छो त डिसऑनेस्टी शामिल आहे डिसऑनेस्टली को माण्हू कंहिंखे फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक चेक हैंड ओवर करे छॾे हुन खां पोइ हे बि अञा हे बि सेक्शन हुनजे मथां लागू थो थी वञे त उन जेको चेक ॾिनो उहो बि डिसऑनेस्टी सां ॾिनो आहे सो इन टिननि सूरत में हिकु न बल्कि टे सेक्शन जे मथां लागू था थियनि चीटिंग जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे फोर्जरी जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे ऐं 489F जो सेक्शन बि लागू थो थी वञे ऐं इन टिननि में तव्हां हिकिड़ी शइ कॉमन ॾिसजो दैट इज़ अ डिसऑनेस्टी डिसऑनेस्टी तव्हांखे टिननि शयुनि में कॉमन नज़र ईंदी जंहिंजो पर्पज़ इहो आहे टू चीट समवन आहे त शइ डिफरेंट आहे 420 आहे चीटिंग डिसीव करणु कंहिंखे धोखो ॾियणु हिन में छा आहे त हिन में असां इंटेंशन ॾिसूं चीटिंग में इंटेंशन फ्रॉम द स्टार्टिंग खां धोखो ई आहे पर्सन हू इंटेंशनली इंड्यूस समवन टू बिलीव दैट दैट थिंग इज़ अ ट्रू हुनखे बिलीव थो कराए ऐं उन खां उहा शइ गेन थो करे इनखे असां चवंदा आहियूं की इलीगल लॉस एन इलीगल गेन इलीगल लॉस कंहिंजे लाइ आहे जंहिंजी शइ आहे हुनखे त लॉस थी वियो इलीगल गेन कंहिंजे लाइ आहे जंहिंखां हुन उहा शइ इलीगली तरीक़े सां वापसि माना इलीगल तरीक़े सां एडॉप्ट कई आहे वरिती हुन खां गेन कई हुनजे लाइ छा थींदो इलीगल गेन सो चीटिंग में डिसऑनेस्टी शुरू में ई इनवॉल्व आहे की हुनजो इंटेंशनली कंसेप्शन खां जेको पर्पज़ आहे उहो चीटिंग ई आहे इन ई अगरि तव्हां डिसऑनेस्टी में अचो था हिते डिपेंड करे थो त चेक कहिड़ी ट्रांसेक्शन में कहिड़े प्रॉमिस में कहिड़ी सूरत में कहिड़ी ऑब्लिगेशन्स में ॾिनो वियो आहे अगरि शुरू में बदनीयती न आहे पेमेंट्स रवां आहे पेमेंट ट्रांसेक्शन फ्रीक्वेंटली थींदी थी अचनि ऐं कुझु फाइनेंशियल इशूज़ जे करे उहो कंप्लीट न करे सघियो आहे त असां हुनखे बदनीयती न चवंदासीं छो की हुनजो हिकिड़ो सॉलिड रीज़न हूंदो अगरि हुनजी शुरू खां ई वठी ट्रांसेक्शन रुकियल आहे ऐं शइ ट्रांसफर थी वई आहे हाणे उहो चए थो उहो तव्हांखे शइ नथो ॾे न उहा हुन एम्बिट में ईंदी त हुन डिसऑनेस्टली सां इहा शइ तव्हांखे इशू कई आहे हिन जो मां हिकिड़ो वॾो मिसाल ॾियां हिकिड़ी तमामु बहितरीन मुंहिंजी फेवरेट हिकिड़ी मूवी आहे टॉम हैंक्स जी ऐं लिनाडो डिकैप्रियो जी हिकिड़ी वॾी बहितरीन मूवी आहे जेकी टोटली हिन सिस्टम ते ठहियल आहे हुन मूवी जो नालो आहे कैच मी इफ यू कैन ऑस्कर में वई नॉमिनेटेड थी त उन में सॼो जेको बैंकिंग सिस्टम आहे की उन में फ्रॉडुलेंटली कोई इंसान फेक चेक जे थ्रू बिलीनियर थी सघे थो पियो छो कि 1960s में अर्ली 70s में एॾी माना डिजिटलाइज़ेशन न हुई त जेकी जंहिंजे थ्रू रोकथाम करे सघिजे त दैट मैन यूज़िंग द फेक चेक ऐं फोर्स डॉक्यूमेंट्स टू गेट सो मेनी ट्रांसेक्शन ऐं बिकम्स बिलीनियर हो उन टाइम ज़माने जो जेको आहे न ही बिकेम बिलीनियर एट दैट टाइम के रियल स्टोरी ते हिकिड़ी मूवी आहे त उहा सॼी रिलेटेड ई हिन चेक्स आहे सो अगरि कंहिंखे अगरि अगरि सपोज़ अगरि काई मूवी सम्झणी आहे अगरि बैक चेक सां रिलेटेड कोई इशू सम्झणा
0: त
1: उहा मूवी ॾिसी सघे थो हुन में सॼो आहे ई फोर्जरी ते ॾिसो न मूवीज़ मां बि असांखे इंस्पिरेशन्स मिलंदी मूवीज़ मां बि असांखे नॉलेज मिलंदी आहे सो अगरि मूवी सुठी आहे ऑस्कर में नॉमिनेटेड आहे ऐं स्टोरी सुठी आहे त देर इज़ अ छा चवंदा आहिनि यू कैन सी इफ यू आर फॉर यूर एंटरटेनमेंट
0: शिवा साहब ब्रेक ते वञण खां पहिरां पाण हिन ते डिस्कस करे रहिया हुआसीं मूं तव्हांखे चयो त सिक्योरिटी चेक ते पाण ॻाल्हाईंदासीं हुन जी तरफ़ हलण खां पहिरां अव्हां हिन जो पर्पज़ ॿुधायो त वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन
1: हिन सेक्शन जो पर्पज़ पाकिस्तान पिनल कोड में हेड करण जो इहो हुयो त जेके बि बैंकिंग सां रिलेटेड जेके बि फ्रॉड आहिनि या चेक सां जेकी फोर्जरी आहे चेक जी या जेके बिज़नेस ट्रांसेक्शन थियनि थियूं बिटवीन द बायर एंड द सेलर या ट्रेडर्स एंड सेलर्स जे विच में ऐं जेको बि मिसयूज़ थिए थो बैंकिंग सिस्टम में उनखे रोकण जे लाइ इहो सेक्शन हिन में एड कयो वियो जीअं इन निज़ाम खे सुठो करे सघिजे ऐं जेको आहे न इन्हनि कारवाइनि खां बची सघिजे मेन पर्पज़ हिन जो
0: मेन पर्पज़ हाणे असां पाण अगरि सिक्योरिटी चेक ते ऐं उहो डिसऑनर थिए पियो उन ते जेको आहे त कीअं कारवाई थी सघे पई या जीअं सिक्योरिटी चेक ॾिनो आहे उहो जेको आहे त डिसऑनर थी सघे थो उन ते FIR बि थी सघे थी या उन ते नथी थी सघे
1: हाणे डिपेंड करे थो त एज़ अ सिक्योरिटी पर्पस ॾिनो वियो आहे चेक छा उहा उहो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन कंप्लीट थी आहे अगरि जेकॾहिं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन कंप्लीट न थी आहे त सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ जेको ॾिनल चेक आहे उहो ऑटोमेटिकली डिसऑनर जी हुन में ज़मीरे में न ईंदो आहे, हैबिट में न ईंदो. अगरि ट्रांसेक्शन थी वई आहे, कम्युनिकेशन थी वई आहे, प्रोमिस जेके न प्रोमिस्ड जेके कंडीशन्स आहिनि उहे पूरी थी वियूं आहिनि एज़ पर कॉन्ट्रेक्ट, ऐं चेक इशू थियो आहे, भले चए उहो सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ छो न इशू थियो हुजे, पर हुन में डिसऑनेस्टी शामिल आहे. त सभ खां पहिरियों हुन में इहो ॾिठो वेंदो त कॉन्ट्रेक्ट जी जेको न लाइबिलिटी आहे उहा कंहिंजे मथां आहे, इशू कंहिं कयो आहे ऐं कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे. रिसेप्ट्स ॾिठियूं वेंदियूं, अगरि हुन में उहे शयूं शामिल आहिनि त उहा डिसऑनेस्टी आहे, अगरि हुन में उहे शामिल न आहिनि त ऑटोमेटिक जेको आहे हुन में इहा डिसऑनेस्टी शामिल नथी थिए चेक बाउंस जी.
0: अक्सर हिकु दफ़ा बल्कि कई दफ़ा ईअं थी चुको आहे त हिकिड़ो चेक जेको हूंदो आहे हिकिड़ी पार्टी जो कंहिंखे ॾिनल हूंदो आहे ऐं उहो फॉरवर्ड थींदो रहंदो आहे, उहो थर्ड पर्सन ते पहुतो, फोर्थ पर्सन ते पहुतो, हुनजी पेमेंट क्लियर न थी, उहो वञी करे चेक जेको आहे त बाउंस कराए पियो ऐं चेक जंहिंजे नाले ते आहे हुन ते बाउंस, हुनजो डिसऑनर थी वियो, त छा हुन ते एफ आई आर थींदी? उहो त हुन पार्टी खे सुञाणे ई कोन, चेक फॉरवर्ड थो थींदो रहे.
1: इहो ॾिसां तव्हांखे ॿुधायमि त चेक ॾियण खां अॻु में पहिरीं ॻाल्हि त कॾहिं बि ब्लैंक चेक ॾिजे ई न.
0: ठीकु आहे,
1: चेक में डेट
0: लिखियलु
1: टाइटल लाज़मी आहे, कंहिंजे नाले ते वञे थो, बैंक जो नालो वञे थो. अगरि मिसाल तव्हां को कॉन्ट्रेक्ट क्रिएट था कयो पिया, हुन कॉन्ट्रेक्ट में तव्हां लिखत वठो, कोई भी कॉन्ट्रेक्ट लिखत खां सवाइ त पूरो ई न. अगरि न आहे त हुन जा शाहिद ज़रूर तव्हां वटि हुजनि, हुन में बैंक जो नालो हुजे, डेट ॾिनल हुजे, पर्पज़ ॾिनल हुजे, बैंक चेक जो नंबर ॾिनल हुजे, हुन ऐं कहिड़े पर्पज़ लाइ इहो चेक ॾिनो थो वए उहो बि हुन में अवेलेबल हुजे. त उन खां पोइ अगरि कोई हुनखे बाउंस कराए थो पियो, हुन में पैसा सपोज़ कंहिं बि बैंक में वञी करे विड्रॉ कराए थो पियो, पे या विड्रॉ कराए थो, हुन में सफिशियंट अमाउंट आहे या उहो अकाउंट सीज़ आहे या हुन में चेक में अल्टरेशन थियल आहे, त डेफिनेटली को हुन में बैंक जो मेमो लॻंदो. हाणे मेमो छा आहे, मेमो में सॼी जेकी मां तव्हांखे टर्म्स एंड कंडीशन ॿुधायो त उहो मेमो में उहे शयूं लिखी ॾींदा या हुन में कढी करे हुनखे ॾींदा त बाबा हिन में को अमाउंट ई न आहे, हे अकाउंट सीज़ आहे या हिन में इनसफिशियंट अमाउंट आहे या जेकी डेट आहे उहा बि जेका न हिन में जेकी सिग्नेचर थियल आहे उहा सिग्नेचर हुन सां मैच ई नथी करे पई ड्रावर सां जेको चेक इशू थो करे पियो. ठीकु आहे, उहे सॼियूं टर्म्स हिकिड़े रिटन सूरत में अवेलेबल करे हुनखे ॾेई छॾंदा जेको पे ई आहे, उहो चाहे हुनखे जेको आहे न एज़ अगरि हुन में डिसऑनेस्टी शामिल आहे त उहो हुनजे ख़िलाफ़ एफ आई आर दाख़िल कराए सघे थो. हाणे सॻे चयां सिक्योरिटी पर्पज़ जे लाइ मां चयुमि, समटाइम्स सिक्योरिटी पर्पज़ जा जेके चेक्स हूंदा आहिनि उहे बि डिसऑनेस्टी में शामिल थींदा आहिनि, अदरवाइज़ सिक्योरिटी पर्पज़ जा जेके चेकिंग हूंदा आहिनि डिसऑनेस्टी में शामिल न थींदा.
0: सो कुझु फीडबैक आहे, असां प्रोग्राम में शामिल कंदासीं.
3: तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियूं. मुंहिंजो नालो अब्दुल गफ़ूर कलादी आहे ऐं मुंहिंजो तालुक घोटकी शहर सां आहे. छा हिकिड़ो सवाल हुयो तव्हां खां, छा सिक्योरिटी चेक बाउंस थियण ते सेक्शन 499 एफ में लागू थी सघे थो?
1: सिक्योरिटी अगरि चेक ॾिठो, अगरि चेक बाउंस थिए थो पियो या चेक डिसऑनर थिए थो पियो त हुनजी क्रिमिनल लाइबिलिटी कहिड़े पर्पज़ सां ऐं कहिड़ी ट्रांसेक्शन में जेको आहे ॾिनो वियो आहे, इशू कंहिं कयो आहे, अगरि उहे शामिल आहिनि त ठीकु आहे, अदरवाइज़ जेको आहे सिक्योरिटी पर्पज़ सां जेको रिलेटेड चेक आहे उहो जेको आहे न एज़ अ डिसऑनर नथो थी सघे. माना हुन में इंटेंशन लाज़मी आहे डिसऑनेस्टी जो.
0: ऑल राइट, त उमेद आहे तव्हांखे जवाब मिली चुको हूंदो. अच्छा, हिकिड़ो वॉइस नोट ॿियो बि आहे प्रोग्राम में, मां शामिल कयां पियो.
4: वालेकुम, आई एम मोहम्मद मेहदी, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी कंप्लेन दर्ज करवाने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है?
0: ठीक है, आपका जवाब देते हैं.
1: बहरहाल जो टे कंडीशन आहिनि, अगरि टिन कंडीशन से अगर वो कोई भी चेक बीहे तो हुन में क्रिमिनल लाइबिलिटी लॻी थी
0: वञे.
1: जीअं मां तव्हांखे चयुमि, हू इशूड द चेक,
0: यस,
1: वॉट वॉज़ द पर्पज़ ऑफ इशूअंस ऑफ चेक एंड फॉर विच thing it was issued, plus me, there was an intention of dishonesty included. Agar ye tracing aahen, the check will be dishonored. Agar check na hai, toh criminal liability mein nahi hindo.
0: Thik hai. Achha, haane FIR tehen jo sawaal aayo, haane saan procedure hi tarpa chon ka. Check dishonored thi payo, haane FIR je lai je ko at thanan te vanyan ka maanu, ta aahan ki khabar at FIR ta suthri thay koon pahi paan wadhi. Ta, उन खां पहिरियां जेको आहे त मामला सेट थी वञणु घुरिजनि या तव्हां रिकमेंड इहो कंदो त एफ आई आर ई कराइणु घुरिजे?
1: मां अॼु खां 6 महीना 7 महीना अगरि असां पोइ ते हलिया वञूं त पाण हिकिड़ो प्रोग्राम कयोसीं मिली करे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट
0: रेज़ोल्यूशन, एडीआर,
1: अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसिंग थीम आहे हिन वक़्तु जेको इहो हले थो पियो त उन में मेजॉरिटी ऑफ द केसिस अहिड़ा जेकी सालनि खां पेंडिंग में पिया आहिनि हुन जो को हिकिड़ो कंक्लूजन नथो निकिरे साल ब साल अगरि मिसाल को वालिद आहे उहो केस थो करे त अगरि उहो मिसाल को ग्रैंड पेरेंट आहे उहो केस करे थो त पुट था अचनि पुट केस अगरि केस हलाईंदे हलाईंदे वीचारा फोता थी वञनि त पोटा था
0: अचनि
1: सो सालनि जा साल केस हलंदा रहंदा आहिनि कंक्लूजन निकिरंदो पर वॾे टाइम माना हिकिड़ो लेंथी प्रोसेस थी वेंदो हुन लेंथी प्रोसेस खां बचण जे लाइ ऐं हद खां वधीक एक्सपेंसिस यूज़ करण खां बहितर आहे त अगरि इन प्रोसेस खे थ्रू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जेके असां आर्बिट्रेशन ऐं मीडिएटेशन चवंदा आहियूं हिन सिचुएशन में अगरि नेगोशिएबल जेके असां नेगोशिएशन सो नेगोशिएशन्स में वञी करे इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे छोकी ॿ पार्टियूं वेही करे ईज़ीली इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे सघनि थियूं अदरवाइज़ न कंदो त हुन में जे क्रिमिनल लिटिगेशन ऐं सिविल जेके आहिनि लिटिगेशन ॿई हिन में इनवॉल्व आहिनि
0: कॉलर शामिल करे मां हिन सां रेलिवेंट तव्हां सवाल कंदुसि अस्सलाम वालेकुम
5: हा सर असांजो हिकिड़ो केस आहे जेको हिन ज़मीन जा
0: जी
5: असांजो कोरट मां नथो थिए केॾो हुन में वञो जेको आहे सिविल कोरट में वञो इहो छा मसलो थींदो घर जी सनत आहे हाणे उहा असां केस विधोसीं कोरट शिकारपुर में हाणे उहो चए थो सिविल कोरट में वञो
1: मूंखे इहो लॻे थो त हिननि अगरि ज़मीन जो मसलो आहे त 145 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इहो हूंदो आहे त हिकिड़ी असां मिसलिनियस एप्लीकेशन ॾींदा आहियूं कंहिं बि हद जे मैजिस्ट्रेट वटि की भई हिन प्रॉपर्टी ते जेको आहे न माना इहे सम्झो त हिकु जान जो ख़तरो थी सघे थो किथे डेथ बि थी वञे त उते इंटरवीन कयो ऐं प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट कयो पर इन मामलनि में मैजिस्ट्रेट छा कंदो आहे पुलिस खां रिपोर्ट घुराईंदो आहे ऐं ॾिसंदो आहे त अगरि जहिड़ो हद खां वधीक वधियल आहे त ॿिन्हिनि पार्टीज़ खे जेको आहे न घुराए करे मसइले खे सॉर्ट आउट कराईंदो आहे अदरवाइज़ इहे सिचुएशन्स काॾे हलिया वेंदा आहिनि सिविल हुन में सिविल लिटिगेशन्स में अगरि इंटाइटलमेंट सां इशू आहे ऐं प्रॉपर्टी कंहिंजे नाले ते आहे त डेफिनेटली उहो जेको इशू वेंदो उहो सिविल प्रोसीजर में हले वेंदो ऐं सिविल लिटिगेशन में वेंदो
0: ठीकु आहे जी
1: डिक्लेरेशन में हलिया वेंदा हिन खे त सिविल कोड में वञी करे डिक्लेरेशन घुरनि ऐं पार्टीशन जी डिमांड करनि
0: ऑल राइट सो हिकिड़ो वॉइस नोट आहे प्रोग्राम में हींअर शामिल कंदुसि लेट्स सी छा पिया चवनि
6: सर आउं फयाज़ अहमद खैरपुर खां अव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहियां सर हिन टॉपिक जे हवाले सां मुंहिंजो हिकिड़ो सुवाल आहे अदालत में चेक बाउंस वारो केस आमतौर ते केतिरो वक़्तु हली सघे थो ऐं मुतासिर माण्हुनि खे कहिड़ो रिलीफ़ मिली सघे थो
0: ठीकु आहे तव्हांजी महिरबानी अदा फयाज़ तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया तव्हांजो फीडबैक बि शामिल कंदासीं ऐं हिकिड़ो ॿियो वॉइस नोट आहे इहो शामिल करे पाण खे प्रोग्राम कंक्लूड करिणो आहे पंज मिंट अची बचिया आहिनि ठीकु आहे सो ही छा पिया चवणु चाहियो ॿुधूं पिया
7: Assalamualaikum, my name is Abdul Nassar, I am from Khairpur Miras. मुंहिंजो सर शहबाज़ खां हिकिड़ो नंढो सुवाल हुयो त अगरि कोई माण्हू असांखे चेक ॾिए थो कंहिं बि डेट जो ठीकु आहे पोइ अगरि उन जे अकाउंट में उन वक़्तु पैसा न आहिनि त पोइ छा असां उन जे ख़िलाफ़ काई कानूनी कारवाई करे था सघूं
0: थोरो सबर कंजो यकदमि तकिड़ा न थीजो
1: मां तव्हांखे उहा ई ॻाल्हि कई त इंटेंशन ॾिठो वेंदो अगरि ट्रांसेक्शन मुसलसिल हलंदी थी अचे त हुनमें बदनीयती शामिल न आहे
0: अच्छा अक्सर इन सिचुएशन में ईअं थींदो आहे त चेक ॾींदड़ जेको आहे न अगरि हुनखे टाइम खपबो आहे त उहो फ्राइडे ते ॾेई छॾंदो आहे ठीकु आहे चवंदा आहे ॿ ॾींहं मूंखे मिली आहे मंडे ते वञी करे हू कराए ऐं हुनखे एॾो ख़्यालु हूंदो आहे जो फोन कंदो आहे यार हाली फ़िलहाल तव्हां बैंक न विझो मां पेमेंट क्लियर करायां विझिरायां अमाउंट विझिरायां देन तव्हां कजो पर कुझु माण्हू इलाही तकिड़ा हूंदा
1: आहिनि
0: असां वञूं पिया
1: आई थिंक अफ़ज़ल सवाल अफ़ज़ल जो बि इहो ई सवाल आहे
0: जी जी
1: त असां इंटेंशन ॾिसंदो हुनमें क्रिमिनल इंटेंशन या डिसऑनेस्टी जेके आहे न अवेलेबल आहे या न आहे अगरि डिसऑनेस्टी शुरू खां ई आहे
0: जी जी
1: त उहो चेक जेको आहे न क्रिमिनल हुनमें ज्यूरिसडिक्शन में हलियो वेंदो अगरि डिसऑनेस्टी न आहे उहो सिविल लिटिगेशन में वेंदो अगरि सपोज़ हुन खां पोइ अमाउंट नथो ॾे पियो हाणे अमाउंट रिकवर करणो आहे त सूट फॉर असां रिकवरी में हलिया वेंदा या समरी सूट असां हुनखे चऊं था
0: मतिलबु 489F में जेको आहे त डिसऑनेस्टी अगरि साबित थिए पई त ही सेक्शन तहत
1: मां इंग्रीडियंट्स अवेलेबल मां जी इंग्रीडियंट्स कुझु मिंट अॻु में जेके ॿुधायां उहे टई इंग्रीडियंट्स अवेलेबल हुन में आहिनि ऐं चेक डिसऑनर थिए थो विथ मेमो
0: ओके
1: त हुन खां पोइ तव्हां जेको आहे न कहिड़े हुन में वञी सघो था छा चवंदा आहिनि एफ आई आर में वञी सघो था अदरवाइज़ न त सिविल डिस्प्यूट आहिनि सिविल ज्यूरिसडिक्शन में वेंदा छोकी अमाउंट उतो ई रिकवर थींदो
0: हेॾे
1: त फाइन ऐं पनिशमेंट
0: पाणी पनिशमेंट केतिरी आहे सर अगरि मिसाल चेक बाउंस थिए पियो डिसऑनर कराए पिया वचनि ऐं डिसऑनेस्टी वाक़ई साबित थिए पई. हिकु माण्हू आहे जेको टाइम वठण लाइ मुसलसल जेको आहे दटाए रहियो आहे, मां ज़ाहिर थिए पियो त हुनखे पेमेंट ॾियणी ई कोन्हे. FIR थी वई त केतिरी हुनखे जेको आहे पनिशमेंट मिली सघे थी.
1: हिनखे इस पर सेक्शन बाबति 3 साल लिखियल आहे ऐं फाइन लिखियल आहे. ठीकु आहे, उहा पनिशमेंट जी एतिरी आहे. ऐं प्लस में डिपेंड करे थो त केसिस 6 महीननि में बि हली सघनि था, साल में बि हली सघनि था. हिन जो अल्टीमेट जेको कंक्लूजन आहे उहो पनिशमेंट ऐं फाइन ई आहे.

0: ठीकु आहे त उन अमाउंट खां पोइ डिपेंड करे थो त छा कंप्लेनेंट अक्यूज पर्सन जो मेलाफाइड ज़ाहिर करे सघियो या न करे सघियो. अगरि मेलाफाइड ज़ाहिर करे वियो हुनजो एक्सरिया ऐं मेन्सरिया बि अगरि ज़ाहिर करे थो वञे प्रूव करे थो वञे त ऑटोमेटिक हुनजी बेल डिसमिस थी वेंदी. अदरवाइज़ बेनिफिट ऑफ डाउट ते ऐं जेको आहे न हुनखे बेल जेको आहे न फर्दर इंक्वायरी ते बेल मिली सघे थी पई.
1: ठीकु आहे, चलो एफ आई आर थी वई, ठीकु आहे, एक्यूज पर्सन खे जेल थी वई, हाणे विक्टिम खे पैसा केरु ॾींदो?
0: मां वंस अगेन चवां कि क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ पनिशमेंट ऐं सज़ा ई ॾींदो या फाइन इम्पोज कंदो, पर जेकी अमाउंट आहे उहो अल्टीमेट जेको रिकवर थींदो उहो थींदो सूट फॉर रिकवरी या समरी सूट में. त घुमी फिरी अगरि असां चऊं त असांखे अमाउंट मिलणो ई सिविल प्रोसीजर मां ई या सिविल लिटिगेशन सां मिलणो आहे. क्रिमिनल में असां पनिश कराए
1: पनिशमेंट कराए
0: हिन इनशा ईंदड़ टाइम में हिते असां जेको आहे न समरी सूट ऐं असां सिविल सां रिलेटेड जा इशूज़ आहिनि असां हुन ते डिस्कशन करे वठंदासीं.
1: ठीकु आहे, अच्छा इन नटशेल तव्हां असांजे व्यूअर्स खे कहिड़ी सलाह
0: एडवाइस? इहा सलाह ॾींदुमि त अगरि तव्हां कोई बि चेक इशू कयो था पिया सभ खां पहिरियों त तव्हां उहो जेको प्रोमिस जेके कॉन्ट्रेक्ट आहे कॉन्ट्रेक्ट जे अंदरि जेके प्रोमिस्ड कंडीशन आहिनि, प्रोमिस कंडीशन जो मक़सदु इहो आहे त जेके बि असां टर्म्स एंड कंडीशन सेट कयूं था हुनखे प्रोमिस चइबो आहे. प्रोमिस कंडीशन तव्हांजूं क्लियर हुजनि, चेक तव्हांजो जेको आहे न ब्लैंक न हुजे, चेक कहिड़े पर्पज़ सां ॾिनो वञे थो उहो हुन में शामिलु हुजे, डेट ऑफ चेक लॻियलु हुजे, पेयर जो नालो लॻियलु हुजे, ड्राइवर जो नालो हुजे, बैंक जो नालो हुजे, अमाउंट स्पेसिफाइड हुजे ऐं उहो बि कॉन्ट्रेक्ट ते लिखियलु हुजे ऐं कहिड़ी बैंक मां निकिरंदो उहो बि लिखियलु हुजे ऐं जेको टाइम आहे त केतिरे टाइम खां केतिरे टाइम ते असां इहो जेको आहे न अमाउंट ॾेई छॾंदासीं ऐं केतिरे टाइम खां केतिरे टाइम में इहे जेको चेक आहे उहो तव्हां विड्रॉ या कैश करे सघो था पिया उहो अवेलेबल हुजे ऐं उन में क्रॉस थियल हुजे कॾहिं बि क्रॉस चेक, छोकी क्रॉस चेक छा थींदो आहे डायरेक्ट ई अकाउंट में
1: डायरेक्ट
0: कैश न मिलंदो
1: आहे.
0: प्लस में कोशिशि कयो त जेको आहे न चेक या त पेमेंट अगरि ॾियो त नेट कैश ॾेई छॾियो पर एस पर कॉन्ट्रेक्ट अल्टरेशन न हुजे. ठीकु आहे, ऐं जेको आहे न कोई बि अगरि बैंक में वञे थो सभ खां पहिरियों तसदीक कराए त छा इहे जेको मूंखे के चेक मिलियो आहे उहो चेक फेक त नाहे, उन में छा इहो अकाउंट सीज़ त नाहे, छा इहे अकाउंट जेको आहे न जीअं हाणे ज़ुबैर हिकिड़ो सुवाल कयो छा अकाउंट उहो फेक त नाहे, फोर्ज डॉक्यूमेंट या फोर्ज मूंखे चेक त न ॾिनो. अचो इहे कुझु ॻाल्हियूं आहिनि इहे तव्हांखे नज़र में रखणियूं पवंदियूं कॉन्ट्रेक्ट रिटन खां अलावा. ऐं प्लस में हिकिड़ी एडिशन ॻाल्हि कयां, रिटन में बि अवेलेबल हुजे ऐं प्लस में शायदि ज़रूरु हुन जा अवेलेबल हुजनि त इन फ्यूचर छा थी वञे तव्हांजी लिटिगेशन जो टाइम बची पवंदो. भले लिखत में न हुजे, ॾिसो न कॉन्ट्रेक्ट ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ा हूंदा आहिनि कॉन्ट्रेक्ट एक्सप्रेस जेके वर्बल ऐं रिटन हूंदा आहिनि, ॿिया हूंदा आहिनि इम्प्लाइड जेके एक्शन कंडक्ट ऐं सर्कमस्टेंसिस ते हूंदा आहिनि. इन ॿिन्हिनि कॉन्ट्रेक्ट्स में हिकिड़ी शिकाम आहे छा द प्रेज़ेंस ऑफ विटनेसिस. फाइनेंशियल इशूज़ में प्रेज़ेंस ऑफ विटनेसिस लाज़मी आहे, अदरवाइज़ तव्हां पंहिंजो केस पाण ई लूज़ करे वेंदो. क्रिमिनल में तव्हांखे वधीक पनिशमेंट थी पनिशमेंट मिलंदी अमाउंट त न मिलंदो. सिविल में छा थींदो तव्हांखे चांसिस आहिनि त तव्हांजो अमाउंट रिकवर थींदो या मामला सेटलमेंट ॾियल वेंदा.
1: ऑल राइट शहबाज़ साहब तव्हांजी महिरबानी.
0: मां चयमि तव्हांजा टॉपिक तमामु आउटस्टैंडिंग हूंदा आहिनि पर हूंदा बज़ाहिर ई त नंढा लॻंदा आहिनि, हिकु लाइन जा लॻंदा आहिनि पर हुनजी जेका डेप्थ ऐं गहराई में वेंदासीं त उहे ॾाढा वॾा हूंदा.
1: पर तव्हां माशाला अहिड़े सुठे तरीक़े सां असांखे गहराई सां
0: इहो जेको आर्ट आहे उहो लेक्चर ॾियण सां असां ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहियूं त असां सिर्फ़ु इहो न सम्झायूं सम्झंदा आहियूं त सिर्फ़ु पढ़ाइणो आहे. इहो बि हूंदो आहे त अगरि 100 ॿार वेठो आहे 100 ॿारनि जो अलॻि अलॻि दिमाग़ कमु कंदो त उन नज़रिए सां अलॻि अलॻि तरीक़े सां इन टॉपिक खे असां ॾिसंदा आहियूं त काॾो बि सवाल थ्रो आउट काॾो बि सवाल थ्रो थी सघे थो ऐं कोई बि टॉपिक बाबर असांखो पुछी सघे थो, छोकी सवाल जे अंदरि सवाल
1: ठहे.
0: हिकिड़ो बुकिश लैंग्वेज ते बि इंसान केतिरो ॻाल्हाईंदो पर जेकी प्रैक्टिकल लाइफ आहे इलाही वास्ट आहे, इलाही वॾी
1: आहे,
0: छोकी प्रैक्टिकल त थींदो रहे थो. एग्ज़ाम्पल्स असां वटि सेट थियल आहिनि. देट इज़ द रीज़न की मां जॾहिं बि ईंदो आहियां त मां सां मूंखे इहा हूंदी आहे त बाबर काॾो न कहिड़ो न कहिड़ो सवाल मूंखां पुछी सघे. जीअं मां चयुमि त हर इंसान जेको आहे न माना हर ॾींहुं सिखे थो पियो, सभिनि कुल इल्म त असां वटि बि न आहे,
1: बिल्कुलु ईअं
0: जेतिरो इल्म असां वटि आहे असां इम्पार्ट कयूं था पिया.
1: बिल्कुलु. सो शहबाज़ साहब जी महिरबानी, व्यूअर्स सां प्रोग्राम ॿुधियो लीगल कॉर्नर ऐं अॼु जो असांजो टॉपिक सेक्शन 489F.

0: PC त इन मुतालिक शहबाज़ साहब बींग लॉयर ॾह सालनि खां वठी हिनखे जेको एक्सपीरियंस आहे इन तव्हांखे इहा ई सजेशन ॾिनी त चेक ॾींदड़ ॾियण वक़्तु एहतियात लाज़मी कयो कॉन्ट्रेक्ट ज़रूरु कयो ईअं चेक कंहिंखे ॾींदव उहा डिसऑनेस्टी अगरि प्रूफ थी पई वञे त टे सालनि ताईं जेल बि
1: थी सघे
0: इन जे लाइ कोशिशि कयो त चेक ॾियण खां पहिरियां इन्हनि शयुनि ते ज़रूरु बेसिक इनग्रीडियंट ते ज़रूरु अमल कयो त जीअं उहो मिसयूज़ न थिए सो वरी कंहिं नई टॉपिक सां गॾु अॻिले प्रोग्राम में अव्हां सां मुलाक़ात थींदी तेसी ताईं पंहिंजे मेज़बान बाबर शेख ऐं असांजे महिमान एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहिब खे ॾींदा इजाज़त त पंहिंजो ख़्यालु रखंदा सदाई गॾु अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खिबसे की बनी है आवाज
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए सुबह

अदुमानम मैं हृदय

अमेरिका जा ईरान जे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक हमला ॾखण ऐं विच ईरान वारनि इलाइक़नि में पुलनि बिजली घरनि सुरंगनि ऐं सामूंडी पाणी बिठो कंदड़ प्लांट्स खे निशानो बणायो वियो हमलनि में शहीद थियल चइनि औरतुनि समेत अठ ॼणनि जूं तस्वीरूं बि जारी केतिरा ई ज़ख़्मी ईरानी मीडिया मूजिबि अमेरिका मेरी टाइम कंट्रोल टावर खे निशानो बणायो जासिक बेट खे टे हज़ारे शहरियुनि खे पाणीअ जी फरहमी मुअतल थी वई ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास तां ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ऐं रेलवे ट्रैक्स खे बि तबाह कयो वियो अमरीकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई अमरीकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे ईरानी फ़ौज जा कुवैत उर्दन बहरैन ऐं सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ते जवाबी वार फासर इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अल ज़रक एयरबेस ते हमिलो करे ॿ फायर जेट्स ऐं टे अमरीकी जंगी जहाज़ तबाह कया आहिनि हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी बि ज़ख़्मी थिया बहरैन में अमरीकी ड्रोन जी डिपो खे बैलिस्टिक मिसाइलनि ऐं ड्रोन सां निशानो बणायो वियो बहरैन जे शेख ईसा एयरबेस ते अमरीकी जंगी जहाज़नि वारे हंध ते बि हमिलो कयो कुवैत में अल अहमदी बंदरगाह ऐं सऊदी अरब जे शहर अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस खे मिसाइलनि सां निशानो बणाए अमरीका खे वॾो नुक़सान पहुचायो वियो आहे कुवैत बिजली ऐं डीसेलिनेशन प्लांट समेत अहम हंधनि ते ईरानी हमलनि जी तस्दीक करे छॾी

हाणे जंग सां गॾु ॻाल्हियुनि वारी पॉलिसी ख़तम थी वई। ईरान अमरीकी हमला जारी रहण जी सूरत में टकराव खे इलाइक़े जंग में तब्दील करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे सीनियर फ़ौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान जी हुकूमत अमरी जवाबी कार्रवाई ते ॿधल आहे। दुश्मन मिसाइल फायर कंदो आहे त तेहरान जो जवाबु हुन खां वधीक ताक़तवर हूंदो आहे। ईरान जो बुनियादी मक़सदु दुश्मन खे सबक़ सेखारणु ऐं जंग जो ख़ात्मो आहे। गॾियल क़ौमनि में ईरान जे नुमाइंदे पारां ईरान जे इंफ्रास्ट्रक्चर ते हमला बंदि करण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त आख़िरी साह ताईं वतन जो दिफ़ा कयो वेंदो। अमरीकी हमलनि में शहीद थियल ईरानियुनि जो खून ज़ाया थियणु न ॾींदासीं।

ईरान ते हमला वधाइण जी तैयारी अमरीका वधीक रीफ्यूलिंग जहाज इसराइल उमाणे छॾिया रूसी मीडिया मूजिबि अमरीका तरफ़ां ईरान ख़िलाफ़ जारियत वधाइण जी तयारी कई पई वञे ईरान में शहरी ढांचे खे निशानो बणाइण बाद रीफ्यूलिंग जहाज मोकिलिया विया वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ऐं कोइती परडे॒ही वज़ीर शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा विच में फोन ते राब्तो परडे॒ही तर्जुमान मूजिब ॿिन्ही अॻुवाणनि ख़ते जे ताज़ी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई कोइती परडे॒ही वज़ीर पारां ईरान जे हमलनि ते सख़्त घटती ऐं इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाशनामे ते मुकमल अमल दरामद जी उमेद ज़ाहिर ख़ते में अमन लाइ पाकिस्तान जी तामीरी ऐं सालिसी वारे किरदार जी साराह इसहाक़ डार चयो त जंगबंदी जे वाइदनि जी पासदारी ऐं चिकताण वधाईंदड़ क़दमनि खां पासो करणु न्यूयॉर्क में मौजूद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सां बि मुलाक़ात कई इलाक़ाई ऐं आलमी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई

तेल जा अघु रोज़ मुक़ररु जो फ़ैसिलो त थी वियो, छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा अघु बि रोज़ानो मुक़ररु थींदा? छा रेलवे जो किरायो बि रोज़ तब्दील थींदो? पेट्रोल सां गॾु छा सब्ज़ी, गोश्त ऐं फ्रूट्स बि रोज़ महांगा ऐं सस्ता थींदा? पेट्रोल अघनि जे रोज़ाने वारी फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया, अवाम परेशानु।

कराची की अदालत में अनमोल उर्फिंग के खिलाफ सी टी डी में दाखिल मंशियात कैसे बुधनी जांच आफिसर के गैर हाजिरी सबब केस जो ज़िमनी चालान पेश न कर पो अदालत जांच आफिसर के गैर हाजिरी से सख्त कावड़ जो इज़हार करें अमले के जांच आफिसर खिलाफ़ शिकायत दाखिल करण जो हुक्म ॾेई छॾियो।

हेल्थ वर्कर्स जो मुतालबनि जी मञता लाइ घड़ी खुदा बख्श भुटो में शहीदनि जे मज़ारनि आॾो एहतजाज मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मायल औरतूं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम खे PPHI में ज़िम करण ख़िलाफ़ु मुज़ाहिरो कयो। लेडी हेल्थ वर्कर जो चवणु हो त सिहत खाते मां PPHI प्रोग्राम में ज़िम करण वारो फ़ैसिलो नौकिरी जे तहफ़ुज़ ख़िलाफ़ु आहे। सालनि खां ॾूर रहनि इलाइक़नि में बुनियादी सिहत जूं ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई रहियूं आहियूं। घड़ी खुदा बख़्श में एहतजाज जो करणु इहो आहे त ही प्रोग्राम शहीद बेनसीर जे दौर में शुरू कयो वियो। हुकूमत इहो फ़ैसिलो फौरी तौरु वापसि वठे। असांखे सिहत खाते जे मुलाज़िम तौरु बरक़रार रखियो वञे।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजन खिलाफ़ कराची में उम्मीदवार जो एहतजाज। उम्मीदवार चो त सी सी ए 2024 के इंजीनियरिंग कैडर जहाँ नतीजा फौरी तौर रद्द कर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सिर जोड़ जक कई वे करप्शन मुलविस जिम्मेवार एहतसाब किया वे।

सखर में सिंध बलूचिस्तान आरी आबाद इतिहाद जो पानीपोर्ट खिलाफ़ धरणो ग्लोब चौक सखर वट धरणो हणी रोड बंद करो बलूचिस्तान जो आबपाशी वारो वजीर सादिक इमरानी सूबाई वजीर सलीम खान कोसो ए बिया धरणे वारे हंधि पहुता अॻवाननि चयो त सिंध ऐं बलूचिस्तान जी पुछड़ीअ वारनि आबाद घरनि जे हिसे जो पाणी चोरी कयो पियो वञे।

हमीरपुर खास में नारी अनुषा आराई की पुरस्कार मौत के पुलिस कतल करार दे छो सरकारी फरियाद से नारी के बिन भायर ए बिन मामन से केस दाखिल सैटेलाइट थाने से दाखिल केस में जाना वो है अड़ा वरियन की अनुषा आराई के जवाबदार कार इल्ज़ाम भुट्टा दई कतल किया नारी के जिसम से तशद जहा निशान भी मौजूद हैं। गंबट में मुसाविर वैन में कार में टक्कर के नतीजे में औरतों समेत 15 जना जख्मी कौमी शाहरा से सचल गेट सामूँ मुसाफिर वैन कार से टकराई वही हादसे चार समूरा जख्मी गेम्स अस्पताल मुंतकिल जख्मियों में नासिर तहीम बिलावल कंबो आबदा सिद्दीक सरोई ए ब्या शामिल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: तो पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल सो न तो करी।
1: इहा वाकई फायदे वाली आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंदते आसानी सा जजब थी, सूर आए सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए
2: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आए चेल जी तकलीफ, सट धक लगन, पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल किए कजे?
2: मुतासिर थे हंध ते डी में ब खा टे भेरा नरमी सा लगायो, आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खा आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: 为了给别人，哎。
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिन

0: ईहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आईडी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तकरीबन चंद मिंटन जे फासले ते मां घर पहुंचण वारी हुयसि त मोटर बाइक्स ते चार ॼणा हुया, अननोन पर्सन्स हुया, चारनि वटि पिस्टल्स हुया ऐं गन पॉइंट ते उन्हनि मूंखां स्नैचिंग कई। छा असां डॉक्टर्स एतिरा अनसेफ आहियूं जो पंहिंजे शहर खैपुर जे अंदरि पंहिंजे प्रोफेशन खे नेस नथा करे सघूं? छा असां पढ़ी लिखी करे हिन शहर में इन जे लाइ आया आहियूं त असां सां कुझु बि कंहिं महिल बि कोई बि वारदात थी सघे थी? जस्टिस खपे, एसपी खैपुर इमीडिएट एक्शन खणे।
1: त अॼु असां घरां निकिरण सां ख़ौफ़ था आहियूं, असां घरां नथा निकिरी सघूं इन उमेद में त असांखे कुझु थी न वञे। असांजा माउ पीउ बार बार बार बार इन ई फिक्र में हूंदा आहिनि त अलाए असां पंहिंजे जॉब ते पहुतासीं या न पहुतासीं। असांखे इंसाफ़ खपे।
2: खैरपुर खे कंदकोट कश्मीर थो बणायो वञे, पर मां सम्झां थो इन सारे अमल में जेके ख़ामोश धुरियूं आहिनि उहे शामिल आहिनि। एस पी साहिबु हुन वक़्त ताईं बि को मोटरसाइकिल फोरू

हेडी हेल्थ वर्कर्स जो मुतालपन जी मंताल है कड़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद के मजार आडो एहतजाज मुख्तलिफ इलाक मायल औरतुन लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के PPHI में जम करण खिलाफ मुजाहरो कियो। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो चवण हो सेहत खाते में PPHI प्रोग्राम में जम करण वो फैसलो नौकरी के तहफ़ खिलाफ है। साल का डोरहन इलाक में बुनियादी सेहत जो खिदमतू सरअंजाम दई रही हुई। गाड़ी खुदा

सखर में सिंध बलोचिस्तान हारी आबाद ताज धरणो ग्लोब चौक सखणी रोड बंद कयो वियो। बलोचिस्तान जो आबपाशी वारो वजीर सादिक उमरानी, सूबाई वजीर सदीम खान कोसो ऐं ॿिया धरणे वारे हंधि पहुता। अॻवाननि चयो त सिंध ऐं बलोचिस्तान जी कुछड़ीअ वारनि आबादगारनि जे हिसे जो पाणी चोरी कयो पियो वञे। जस्कम जे मर्कज़ी सट ते कारकुनन जी गिरफ़्तारियुनि ऐं भाड़नि जे अफ़वाह ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा। दादू, सरहाड़ी, पिंगरियो ऐं ॿियनि शहरनि में कारकुनन एहतजाज कयो। टुल पुल जी स्टेशन, नवाबशाह, किपरो ऐं टंडो आदम में बि एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। गिरफ़्तार थियल कारकुनन जी आज़ादी ऐं सूबे मां अफ़वाह थियल ॿारनि जी फौरी बाज़ियाबी जो मुतालबो। हेठो ख़ास में नारी अनुषा आराई जी पुरस्कार मौत खे पुलिस क़तल करार ॾेई छॾियो। सरकारी फरियाद ते नारी जे ॿिनि भाइरनि ऐं ॿिनि मामनि ते केस दाख़िल। सेटेलाइट थाणे ते दाख़िल केस में ॼाणायो वियो आहे त अरिड़हं वरियनि जी अनुषा आराई खे जवाबदारनि कारा इल्ज़ाम घुटा ॾेई क़तल कयो। नारी जे जिस्म ते तशद्दुद जा निशान बि मौजूदु आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: It's 7:15 PM.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
6: GAFM 88
5: नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
6: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
5: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
6: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी, सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
5: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ?
6: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
5: इस्तेमाल कीअं कजे?
6: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

पाकिस्तान भारतीय जहाजनि लाइ फज़ाई हदनि ते लॻायल पाबंदी में वाधि करे छॾी। भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स भारतीय मिल्कियत या लीज ते ॾिनल जहाज़नि तोड़ी फ़ौजी जहाज़नि लाइ फज़ाई हदूं इस्तेमालु करण ते पाबंदी हूंदी। पाबंदी में 24 अगस्त 2026 ताईं वाधि कई वई। सिंध जे क़ौम परस्तन पंजाब जे न्यू जलालपुर केनाल खे सिंध जे पाणी ते धाड़े जो मनसूबो करार ॾेई छॾियो। तकरारी केनाल फौरी तौर बंदि करण जो मुतालबो क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ अतीफ़ परी जो चयो आहे त पंजाब ज़बरदस्ती सिंध जे हिसे जो पाणी चोरी करे रहियो आहे। सिंधु ते को बि नओं केनाल या डैम क़बूल न आहे। ग़ैर क़ानूनी जलालपुर केनाल रिथा खे हमेशह लाइ दफ़न कयो वञे। जेस्कम चेयरमैन सनान कुरेशी चयो आहे त न्यू जलालपुर केनाल ग़ैर क़ानूनी मनसूबो आहे। ज़बरदस्ती केनालनि ज़रिए पाणी खयो वञे थो। सिंधु ते को बि केनाल क़बूल न आहे। दरिया बचाइण लाइ सिंध जा माण्हू तारीख़ी जुदोजहद करण लाइ तयारु आहिनि। सिंध जे पाणीअ ते धाड़ो हाणे बंदि कयो वञे।

0: कुझु ई मिंटनि चंद मिंटनि जे फ़ासिले ते मां घर पहुचण वारी हुयसि त ॿ मोटर बाइक्स ते चार ॼणा हुया, अननोन पर्सन्स हुया, चारनि वटि पिस्टल्स हुया ऐं गन पॉइंट ते हुननि मूंखां स्नैचिंग कई। छा असां डॉक्टर्स एतिरा अनसेफ आहियूं जो पंहिंजे शहर खेपुर जे अंदरि पंहिंजे प्रोफेशन खे नेस नथा करे सघूं? छा असां पढ़ी लिखी करे हिन शहर में इन जे लाइ आया आहियूं त असां सां कुझु बि कंहिंमहिल बि कोई बि वारदात थी सघे थी? जस्टिस खपे, एसपी खैपुर इमीडिएट एक्शन खणे।
1: त अॼु असां घरां निकिरण सां ख़ौफ़ था आहियूं, असां घरां नथा निकिरी सघूं इन उमेद में त असांखे कुझु थी न वञे। असांजा माउ पीउ बार बार बार वरी नई फिक्र में हूंदा आहिनि त अलाए असां पंहिंजे जॉब ते पहुतासीं या न पहुतासीं। असांखे इंसाफ़ खपे।
2: खैरपुर खे कंदकोट कश्मीर थो बणायो वञे, पर मां सम्झां थो इन सारे अमल में जेके ख़ामोश धुरियूं आहिनि उहे शामिल आहिनि। एस पी साहिबु हुन वक़्त ताईं बि को मोटरसाइकिल फोरू गिरफ़्तार न थियो आहे।
3: असांखे कुझु न खपे।

दस कमरे मरकजी छट ते कारपोरेट की गिरफ्तारी ऐं बाड़न जे अफवाह खिलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा दादू सरहाड़ी ऐं पिंगरियो ऐं ॿियनि शहरनि में कारपोरेट एहतजाज कयो। टुल पुलजी स्टेशन नवाबशाह खिपरू ऐं टंडो आदम में बि एहतजाजी मुज़ाहिरा कया पिया। गिरफ़्तार थियल कारपोरेट जी आज़ादी ऐं सूबे मां अफवाह थियल ॿारनि जी फौरी बाज़ियाबी जो मुतालबो। मीरपुर खास में नारी अनुषा राई जी प्रसार मौत के पुलिस कत्ल करार दई छो। सरकारी फरियाद से नारी के बिन भायरन बिन मामन से केस दाखिल। सेटेलाइट थाने से दाखिल केस में जाने पो है त अरड़ा वरियन की अनुषा आरई के जवाबदार कारण इल्जाम घुटारे कत्ल किया। नारी के जिसम से तशद्दुद जा निशान भी मौजूद है।

0: जी नायली ज्वाला मिसाल साम्हूं अची वियो। प्लाट जी तकरार तां झड़ींदड़ ॿिनि धुरियुनि जे विच में हिक ॿिए मथां मोर्चा बंद फायरिंग, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। ॿिन्ही धुरियुनि जे हथियार बंदनि जे वक़्फ़े वक़्फ़े सां हिक ॿिए मथां फायरिंग, शहर में ख़ौफ़ ऐं रास पकड़िजी वियो। समूरी सूरतयाल ते पुलिस ते ख़ामोश तमाशाई बणियल रही।
1: सोलर ऐं बैटरी
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अमेरिका जे ईरान जे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक हमला ॾखण ऐं विच ईरान वारनि इलाइक़नि में पुलनि बिजली घरनि सुरंगनि ऐं सामूंडी पाणी मिठो कंदड़ प्लांट्स खे निशानो बणायो वियो हमलनि में शहीद थियल चइनि औरतुनि समेत अठ ॼणनि जूं तस्वीरूं बि जारी केतिरा ई ज़ख़्मी ईरानी मीडिया मूजिबि अमरीका मेरी टाइम कंट्रोल टावर खे निशानो बणायो जासिक बेट ते हज़ारे शहरियुनि खे पाणीअ जी फरहमी मुअतल थी वई ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ऐं रेलवे ट्रैक्स खे बि तबाह कयो वियो अमरीकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई अमरीकी मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेविल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे।

शहीद शाहनवाज भुट्टो जी 41 वर्सी मल्हाई वई। नओं देरो हाउस में वर्सी तकरीब ऐं क़ुरान ख़ानी शहीद शाहनवाज भुट्टो जी नियाणी ससी भुट्टो ऐं ख़ातून अवल आसफा भुट्टो ज़रदारी नओं देरो हाउस में वर्सी तकरीब में शिरकत कई। ॿिन्ही घड़ी ख़ुदा बख़्श में शहीदनि जे वज़ारनि ते हाज़िरी बि भरी। आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो त भुट्टो ख़ानदान हमेशह अवामी हक़नि ऐं जमहूरी क़दरुनि लाइ बेमिसाल क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि।

0: कुझु ई मिंटनि चंद मिंटनि जे फ़ासिले ते मां घर पहुचण वारी हुयसि त ॿ मोटर बाइक्स ते चार ॼणा हुया, अननोन पर्सन्स हुया, चारनि वटि पिस्टल्स हुया ऐं गन पॉइंट ते हुननि मूंखां स्नैचिंग कई। छा असां डॉक्टर्स एतिरा अनसेफ आहियूं जो पंहिंजे शहर खैपुर जे अंदरि पंहिंजे प्रोफेशन खे नेस नथा करे सघूं? छा असां पढ़ी लिखी करे हिन शहर में इन जे लाइ आया आहियूं त असां सां कुझु बि कंहिंमहिल बि कोई बि वारदात थी सघे थी? जस्टिस खपे, एस पी खैपुर इमीडिएट एक्शन खणे।
1: त अॼु असां घरां निकिरण सां ख़ौफ़ज़ुदा आहियूं, असां घरां नथा निकिरी सघूं इन उमेद में त असांखे कुझु थी न वञे। असांजा माउ पीउ बार बार बार बार इन ई फिक्र में हूंदा आहिनि त अलाए असां पंहिंजे जॉब ते पहुतासीं या न पहुतासीं। असांखे इंसाफ़ खपे।
2: खैरपुर खे कंदकोट कश्मीर थो बणायो वञे, पर मां सम्झां थो इन सारे अमल में जेके ख़ामोश धुरियूं आहिनि उहे शामिल आहिनि। एस पी साहिबु हुन वक़्त ताईं बि को मोटर साइकिल फोरू गिरफ़्तार न थियो आहे।
3: असांखे कुझु न खपे, जेको वणेव वञे।

0: Pero entonces tú mujer no sabes cuántos días aquí a montar.
1: शहरपुर में वधंदड़ बदमनी ऐं लेडी डॉक्टर खां पुर खिलाफ़ सिविल सोसाइटी लेडी डॉक्टर्स वकीलनि ऐं शहरियुनि जी एहतजाजी रैली अॻवाणनि चयो त पुर धाड़ा ऐं चोरी जूं वारदातूं मामूल बणजी वियूं आहिनि पुलिस मुकमल तौर नाकाम आहे लेडी डॉक्टर दादी अला शरी खां पुर कदड़ जवाबदारनि खे फौरी गिरफ़्तार करे सामान वापसि करायो वञे मीरपुर ख़ासि में नारी अनुषा आराई जी पुलिस मौत के पुलिस कत्ल करार दे छो सरकारी फरियाद से नारी के बिन भाईर बिन मामन ते केस दाखिल थाने ते दाखिल केस में जाने पो है अरड़ा वरियन की अनुषा आरई के जवाबदार कारण इल्जाम भुट्टा दे कत्ल कयो नारी के जिस्म ते तशद्दुद जा निशान भी मौजूद हैं चंबड़ बरसा
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
4: सुनते रहो GFM 90.8